100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन गुरुवार है। शक संवत 1948 आषाढ़ मास की 11वीं तिथि तदनुसार 2 जुलाई 2026 है। इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: नव ऊर्जा, नव सृष्टि सृजन, नव हो उमंग, पवित्र हो मन। नित्य नव दिवस का शुभारंभ भक्ति भाव की पुष्पांजलि।
1: जीवन की आपाधापी के मध्य जब हमें सुकून, एकाग्रता और मन की शांति की खोज होती है तो भक्ति की मार्ग उसे आसान बना देता है। जहां सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन के सत्य, प्रेम और करुणा के भाव को हम समझते हैं, भक्ति का मार्ग सरल बन जाता है भजन से। तो आइए इस राह के साथ ही अपने दिन की मंगलमयी शुरुआत करते हैं विघ्नहर्ता गौरी नंदन की स्तुति के साथ।

जब ईश्वर भक्ति की सराह में हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे विश्वास की ये जो डोर है ना, वो कभी कभी ढीली पड़ने लगती है। लेकिन तभी सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस डोर को और कसके थाम लेने की और भक्ति की इस राह पर लगातार आगे बढ़ते रहने की।

0: नमस्कार दोस्तों।
1: परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब दूसरों का हित सबसे बड़ा धर्म है, और जब हम अपने कर्मों से या अपने वचनों से किसी को कष्ट देते हैं तो ये सबसे बड़ा अधर्म होता है। तो चैन बहुत सोच समझ कर करिए। अगर मन की शांति का लक्ष्य साधना है तो आपको अपने अंतःकरण को स्वच्छ करना होगा, ये सबसे पहली शर्त है।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, सवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

ये सच है कि ईश्वर हर वक्त हमें देख रहा होता है, हमें सुन रहा होता है। लेकिन हाँ, हमारे विश्वास की डोर तब ढीली पड़ने लगती है जब कोई हमारी मनचाही प्रार्थना, जो हम बहुत वक्त से ईश्वर से कर रहे होते हैं, वो पूरी नहीं होती। ऐसे में कई बार वो आपकी इच्छाओं को पूरा तो करते हैं, लेकिन जब ईश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे होते हैं, तब ये यकीन करना होता है कि हमें वो उससे बेहतर राह को समझाने की, उस पर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस पर जरूरत होती है ईश्वर की उस राह को समझने की और उस राह पर आगे बढ़ने की, क्योंकि ईश्वर का चुना हुआ मार्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो सकता है आपके जीवन के लिए।

वक्त हो गया है 6:36, प्रोग्राम चल रहा है पुष्पांजलि, जहां आज आपके साथ निधि है। और जब बात ईश्वर की आती है, ईश्वर आराधना की आती है, तो अक्सर मन में सवाल ये भी उठता है कि ईश्वर साथ है, ये कैसे जाने। सवाल ये भी तो आता है। अब इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो सामने नहीं आ सकता, लेकिन हाँ अनुभव आप कर सकते हैं। कैसे? जब आप हर परिस्थिति में मन को हारने नहीं देते, असफल होने पर उम्मीद की डोर थामे रखते हैं और अपने प्रयास करते रहते हैं, दूसरों के साथ अलग सा भाव नहीं रखते, सब कुछ बिखर जाने पर भी फिर से सब कुछ समेटने की हिम्मत रखते हैं, तो यकीन मानिए भगवान आपके साथ है। उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर विश्वास से महसूस जरूर किया जा सकता है। और यही विश्वास है जो ये बताता है कि ईश्वर आपके साथ है, इसीलिए तो आप लगातार हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं।

कहते हैं कि जब मन व्याकुल होता है तो ईश्वर का नाम सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और सत्य भी यही है, हम जब भी परेशान होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। पर जब बात भक्ति की आती है तो भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार, सेवा और भाव में भी होनी चाहिए। जिस ईश्वर ने आपको ये धन संपत्ति दी है ना, उसे आप उसी धन को खर्च कर चमकीले आडंबरों से खुश कर लेंगे, ये मात्र भ्रम होता है। और जब कहानी से धन हट जाता है तो बचा क्या, सिर्फ भाव। इसीलिए कहा भी जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।

दूरदर्शन गुड मॉर्निंग कानपुर। मैं हूं आपके साथ सारिका शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। वेल दोस्तों, देखते ही देखते साल का आधा सफर पूरा हो गया है और आज 2 जुलाई के साथ इस सफर में एक और नया दिन जुड़ गया है। वैसे वक्त सचमुच कितनी खामोशी से आगे बढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे कल ही की तो बात हो और नए साल का स्वागत जो हमने किया वो कल ही तो किया। पर देखिए ना, हम नए साल के दूसरे हिस्से में कदम रख चुके हैं।

आओ ना बिकॉज ऑलवेज इन योर हार्ट 102.2 एफएम रेनबो कानपुर दिलों से जुड़ा हमेशा आपके साथ। वेल दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग कानपुर का सुबह का आगाज तो खूबसूरती के साथ हो चुका है। बारी है एफएम 102.2 रेनबो कानपुर से प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की रूपरेखा पर, लाइनअप पर एक नजर डालने की। तो दोस्तों, समाचार के बाद सुबह 8:30 पर सजेगी सुरों की पुरानी महफिल। सुबह 9:00 आप एंजॉय करेंगे प्रोग्राम रस बहार मेरे यानी की सारिका के साथ। विविधा के तहत प्रोग्राम लोक रंग के जरिए सुनेगा कार्यक्रम लोक रंग। जी हाँ, इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे कुछ लोक गीत। दिन में 11:00 सुनिएगा प्रोग्राम हमनवा मेरी यानी कि सारिका के साथ, और आज इस प्रोग्राम में मेरी हमनवा होंगी सीमा। प्रोग्राम म्यूजिककार को आप सुनेंगे दिन में 3:00 सीमा के साथ, और शाम 4:00 का वक्त होगा प्रोग्राम आपकी पसंद का। तो अगर आप भी अपनी ईमेल के जरिए चाहते हैं सुनना अपनी पसंद के गाने, तो हमें आप अपनी फरमाइशी गीतों की मेल इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है aikansomedia@gmail.com। वहीं दोस्तों, हम आपको बताते चले कि सोमवार यानी कि 6 जुलाई को दिन में 4 से 5 तक एफएम रेनबो कानपुर में प्रसारित होने वाले प्रोग्राम हेलो कानपुर की रिकॉर्डिंग आज सुबह 10:00 से 11:00 के बीच होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी बातों और फरमाइशी गीतों के साथ हमसे जुड़ना, तो हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर है 0512-254-1818। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 0512-254-1818। 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम

0: वहीं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है, दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान करने से लोगों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना बढ़ती है, इससे आपसी समझ और भाईचारा मजबूत होता है। 102.2 FM रेनबो कानपुर है आपके साथ।
1: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूं, जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
2: अरे सुन सुन।
3: यस मां।
2: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
3: मां मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
2: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

दूरी तो अब दरमियान नहीं है, बिकॉज 102.2 एफएम रेनबो कानपुर है आपके साथ। रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। अब वक्त है एक क्विक सोशल मीडिया चेक का। जी हाँ, आज लोग किन मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं, कौन सी पोस्ट बटोर रही है सबसे ज्यादा अटेंशन, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है, जो पीढ़ी अपनी विरासत का सम्मान करती है वही प्रगति करती है।

हमारे जिन लिसनर्स ने हमें अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें बताते चलें कि प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। ऑलवेज इन योर हार्ट 102.2 एफएम रेनबो कानपुर, दिलों से जुड़ा हमेशा आपके साथ। चलिए दोस्तों, अब करते हैं एक छोटा सा टाइम ट्रेवल, स्क्रॉल करते हैं हिस्ट्री के पेजेस, जहाँ जहाँ दर्ज हैं आज के दिन के कुछ यादगार पल। जानते हैं 2 जुलाई इतिहास के पन्नों में क्या खासियत रखता है। तो दोस्तों, आज ही के दिन यानी कि 2 जुलाई 2002 में हेपेटाइटिस सी की जांच को पूरे भारत में अनिवार्य किया गया। और आज ही के दिन 2 जुलाई को ब्रिटेन के थॉमस सेवरी ने पहले भाप के इंजन का पेटेंट हासिल किया। और हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस भी मनाया जाता है। और 2 जुलाई को फिल्मी दुनिया के पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज का जन्म भी हुआ।

दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। जी हाँ, सुबह की पॉजिटिव शुरुआत गुड मॉर्निंग कानपुर के साथ। चलिए दोस्तों, अब देश विदेश की उन खबरों पर नजर डालने का वक्त है जो बना रही हैं आज की ताजा सुर्खियां।

दोस्तों, श्री अमरनाथ जी की यात्रा जम्मू कश्मीर में कल यानी कि 3 जुलाई से शुरू होगी। यात्रा के प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों का आकलन सरकार के द्वारा कर लिया गया है। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 16वें भारत जापान वार्षिक समिट के लिए 1 जुलाई यानी कि कल से भारत के आधिकारिक 3 दिन के दौरे पर हैं। वहीं CBSE के स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर। जी हां, शिक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंग अब क्लास 7th, 8th और 9th में पढ़ रहे वे स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 भाषा नीति के तहत 2 विदेशी भाषाओं को चूज किया है, वे 10th क्लास तक उसी भाषा संयोजन के साथ पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इन्हें बीच में अपने सब्जेक्ट बदलने की जरूरत नहीं है।

विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू हो गया कल से। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की हैं। हर दिन की हैप्पी शुरुआत, गुड मॉर्निंग कानपुर है आपके साथ।

102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर, और इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं सारिका के साथ। वेल, अब अपने कानपुर की धड़कनों को महसूस कीजिए फटाफट अंदाज में विद ब्यूटीफुल ट्रैक। जी हां, IIT कानपुर का 59वां दीक्षांत समारोह 15 जुलाई को आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 2500 स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी जाएंगी और साथ ही लगभग 450 शोधकर्ताओं को PhD की उपाधि से सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं दोस्तों, 15 जुलाई से IIT कानपुर के 130 सेंसर बताएंगे कानपुर की आबो हवा कितनी शुद्ध है। जी हाँ, ये सेंसर किन इलाके में प्रदूषण धूल कणों से बढ़ रहा है या फिर जहरीली गैसों से, इसकी जानकारी देंगे। स्मार्ट सिटी और IIT कानपुर की एरावत रिसर्च फाउंडेशन के तहत ये काम किया जा रहा है।

ईटी 2026 यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज यानी कि 2 जुलाई से 4 जुलाई तक नगर के 32 केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें 70,320 कैंडिडेट परीक्षा देंगे और आज ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। वहीं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी का 28वां दीक्षांत समारोह 10 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। समारोह में 27 स्टूडेंट्स को 33 पदकों से सम्मानित किया जाएगा। 102.2 FM रेनबो कानपुर है आपके साथ। सुबह की पॉजिटिव शुरुआत गुड मॉर्निंग कानपुर के साथ।

आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in।

0: www.ecom.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। अब वक्त है मैदानों से आने वाली उन अपडेट्स का जिन पर टिकी हैं कई खेल प्रेमियों की निगाहें। जी हां, बल्ले या बॉल की गूंज हो या गोल की खुशी, लिए चलते हैं आपको खेल जगत की हलचलों की ओर। स्पोर्ट्स अपडेट है आपके लिए। आईसीसी की ताजा प्लेयर रैंकिंग में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अपने साथी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा की जगह दुनिया के नंबर एक T20 बल्लेबाज का स्थान ले लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वहीं फीफा वर्ल्ड कप में मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। और भारत कल 5 मैचों की T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड से भिड़ा, बारिश के कारण मैच ड्रॉ हो गया। और बात अपने कानपुर की करें तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित स्पीड हंट का आयोजन कल यानी कि 1 जुलाई से आज यानी कि 2 जुलाई तक किया जा रहा है। और 2 दिनों के स्पीड हंट ट्रायल में 12 जिलों के कुल 1695 खिलाड़ी पार्ट ले रहे हैं। 102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण सप्ताह चल रहा है। आइए इस बार सिर्फ पौधे लगाने का ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल करने का भी संकल्प लें, क्योंकि आज उठाया गया हरित कदम आपके आने वाले कल को और भी सुंदर और स्वच्छ और सुरक्षित बना सकता है। तो प्रकृति से जुड़िए, हरियाली बढ़ाइए और मुस्कुराते रहिए। फिलहाल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर से दीजिए सारिका शुक्ला को इजाजत। देश दुनिया की खबरों के बाद मिलते हैं कार्यक्रम सुरों की पुरानी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक

0: कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44

0: इस पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थ यात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थ यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में, केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है, तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

जोश और ऐसा दर्द समेटा कि उनके गीत सीधे दिल में उतर जाते हैं। तो आइए आज की इस महफिल में याद करते हैं उस शानदार गायक को जिनकी आवाज आज भी पुराने गीतों के प्रेमियों के दिलों में उसी गर्म जोशी से गूंजती है। मोहम्मद अजीज अजी को विनम्र श्रद्धांजलि, विनम्र नमन 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से। फिलहाल शुरुआत करते हैं आज की इस खास महफिल की।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल। और इस कार्यक्रम को लेकर आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सारिका। दोस्तों, आज की ये महफिल समर्पित है हिंदी फिल्म संगीत के उस बुलंद, जोशीले और दिल को छू लेने वाले स्वर को, जिसने 80 और 90 के दशक में अनगिनत गीतों को अपनी आवाज से एक अलग पहचान दी। जी हाँ, आज है सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज की जन्म जयंती। जुलाई 1954 को जन्मे मोहम्मद अजीज ने अपनी गायकी में ऐसी मिठास, ऐसा

अभी आप सुन रहे थे नगीना फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज की आवाज़ में, और कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं आखिर क्यों फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। संगीत है राजेश रोशन का और गीत लिखा इंदिवर ने।

102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल और कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं कर्मा फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजा और बोल हैं लक्ष्मी आनंद बख्शी के।

सिन्हा, फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजा और बोल हैं लक्ष्मी आनंद बख्शी के।

कार्यक्रम में अब बारी है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज में इस गीत की, और संगीत दिया इस गीत में कल्याण जी आनंद जी ने, और बोल हैं आनंद बख्शी के।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में खतरों के खिलाड़ी फिल्म का गीत। और अब बारी है बड़े घर की बेटी फिल्म के इस गीत की। आवाजें एक बार फिर से मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, बोल संतोष आनंद के।

तो दोस्तों आज की सुरों की पुरानी महफिल में बस इतना ही। मोहम्मद अजीज साहब की आवाज का जादू कुछ ऐसा है कि उनके गीत सुनते ही यादों का एक पूरा मौसम दिल में उतर आता है। कभी जोश, कभी प्यार, कभी दर्द, हर एहसास को उन्होंने अपनी आवाज से खास बना दिया। जन्म जयंती के इस मौके पर उन्हें दिल से नमन और यही दुआ कि उनके सुर यूं ही हमारी यादों, हमारी महफिलों और हमारे दिलों में हमेशा महकते रहें। फिलहाल दीजिए सारिका शुक्ला को इजाजत, कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल को यहीं वाइंड अप करने का, और एक छोटे से अंतराल के बाद मिलते हैं उस पार कार्यक्रम रस बहार के साथ।

बारिश की बूंदे फिर से खिड़कियों पर दस्तक दे रही हैं। पीड़ों ने हरियाली की नई पोशाक पहन ली है और सुबह की सड़कों पर एक बार फिर रंग बिरंगे स्कूल बैग्स नजर आने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्कूल की घंटी बज चुकी है और उसके साथ ही लौट आई है नई किताबों की खुशबू, नई क्लासेस का एक्साइटमेंट और नई दोस्तों से मिलने की खुशी और साथ ही नए सपनों की शुरुआत। तो दोस्तों, प्रोग्राम रस बहार के आज के इस खूबसूरत सफर में हम लेकर आए हैं बचपन की मीठी यादों से सजे कुछ खूबसूरत नगमे, स्कूल के दिनों की कुछ दिलचस्प बातें, नन्हे सपनों की कुछ प्रेरक कहानियां और उन बच्चों की सफलता के किस्से जिन्होंने अपनी मेहनत और हुनर से नई पहचान बनाई है। तो दोस्तों, आज की इस महफिल में चार चांद लगाएंगी बचपन की मासूमियत, स्कूल के दिनों की मिठास। आगाज करते हैं बचपन की यादों को सजोए इस गीत के साथ प्रोग्राम रस बहार का।

खो ना जाएं ये तारे जमीन पर। आज है 2 जुलाई और जुलाई का महीना दोस्तों सिर्फ मौसम नहीं बदलता बल्कि बच्चों के चेहरों पर एक नई एनर्जी, एक नया कॉन्फिडेंस और कुछ नया करने का उत्साह भी लेकर आता है। जी हाँ, कोई नन्हा दोस्त स्कूल की दहलीज पर पहली बार कदम रख रहा है तो कोई नई कक्षा में पहुंचकर अपने फ्यूचर गोल्स की ओर एक कदम आगे बढ़ा रहा है। वैसे स्कूल की घंटी की आवाज सिर्फ आवाज नहीं, ये नई लर्निंग, नए आइडियाज और नई पॉसिबिलिटीज की शुरुआत होती है और यही बनती हैं दोस्तियां, यही जन्म लेते हैं सपने और यही से निकलते हैं भविष्य के सितारे।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

वैसे दोस्तों जुलाई के महीने से ही शुरू होती है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की नई जर्नी। जी हाँ, नई नोटबुक के पहले पन्ने से लेकर साल के आखिरी रिपोर्ट कार्ड तक स्कूल हमें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देता बल्कि टीम वर्क, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और लाइफ की इम्पोर्टेंट वैल्यूज भी सिखाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए गए बच्चों की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी, क्रिकेट की दुनिया में कम उम्र में शानदार पहचान बनाने वाले वैभव को खेल के क्षेत्र में सम्मान मिला। वहीं श्रवण सिंह जो पंजाब से हैं, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के जो जवान थे उन तक पानी, दूध और कई अन्य जरूरी सामान पहुंचाकर सेवा और साहस का परिचय दिया। वहीं महाराष्ट्र के अर्णव अनुप्रिया महर्षि, इन्होंने सड़क दुर्घटना के बाद अपनी चुनौतियों को ताकत बनाया और फिर पक्षाघात से के जो पेशेंट्स थे उनके लिए एआई बेस्ड पुनर्वास उपकरण विकसित किया। और वहीं यूपी की पूजा पाल ने किसानों ग्रामीणों की समस्या को समझते हुए धूल कम करने वाली मशीन विकसित कर अपनी अलग पहचान बनाई। 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार और इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं सारिका के साथ।

जी हाँ, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। और दोस्तों, अगर इन बच्चों की उपलब्धियां जो हमने अभी सुनी इस गाने के पहले, तो एक बात तो साफ हो जाती है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। जी हाँ, और जब बात हो होनहार बच्चों की, तो एक बार फिर लौटते हैं उन स्कूल्स की ओर जहां हर सपना अपनी पहली उड़ान भरता था। तो जब आज स्कूल की घंटी बज चुकी है दोस्तों, तो जरा आप लिसनर्स की यादों के पन्ने पलटने का वक्त आ चुका है। तो आज का हमारा सवाल खास तौर पर आपके लिए, बताइए आपके स्कूल के दिनों की ऐसी कोई कौन सी याद है जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है? कोई मजेदार किस्सा, कोई पसंदीदा टीचर, कोई शरारत या कोई ऐसी सीख जो आज तक आपके साथ है? जी हाँ, हमसे शेयर कीजिए, हमें अपनी मेल भेजकर। हमें इंतजार है आपकी मेल का। हमें मेल भेजिए हमारे जो ईमेल एड्रेस है उसके पते पर। और हमारा जो ईमेल एड्रेस है उसे हम आपसे बताते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है arkansomedia@gmail.com। जी हाँ, हो सकता है आपकी यादें सुनकर आज के जो नन्हे हैं, बच्चे हैं, वो भी आपसे कुछ सीखें या आपकी यादें किसी की मुस्कुराहट बने। फिलहाल बचपन की मासूमियत और सपनों की उड़ान को सलाम करता ये गीत पहुंच रहा है आप तक।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।

0: आरबीआई कहता है।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: वन जीरो टू पॉइंट टू एफएम रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार। वेल दोस्तों, गाने के पहले हमने आपसे पूछा था कि बताइए आपके स्कूल के दिनों की ऐसी कौन सी याद है जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। कोई मजेदार किस्सा, कोई पसंदीदा टीचर, कोई शरारत या कोई ऐसी सीख जो आज तक आपके साथ है। और हमें कई मैसेजेस अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और जो सबसे पहला मैसेज आया है वो है आयरा खुर्शीद का। इन्होंने लिखा है कि याद है वो बचपन जब जेब में पैसे कम होते थे लेकिन खुशियां बहुत होती थी। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही कागज की नाव बन जाती थी और शाम होने तक लगता था कि पूरी दुनिया हमारी है। क्या बात है। और बचपन की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि तब कल की चिंता नहीं थी, बस आज खेलना होता था, हंसना होता था। काश वो दिन मैं वापस जी पाती। जी, ऐसा ही होता है सबके साथ में। बचपन के जो दिन होते हैं वो बड़े अनमोल होते हैं। और ऐसा ही एक और मैसेज मिल गया है, और ये है काशिफ एहतशाम का। और इन्होंने लिखा है कि आपका प्रोग्राम सुनकर आज अचानक स्कूल की एक बात याद आ गई। लंच ब्रेक शुरू होने से पहले ही घड़ी पर नजर टिक जाती थी। घंटी बजते ही सब अपने अपने टिफिन खोलने लगते थे, लेकिन मजा तो हमेशा दोस्तों के टिफिन में ही आता था। बिल्कुल। और कभी किसी का पराठा, कभी किसी की नूडल्स, तो कभी आधी चॉकलेट बांटकर खा लेना। तब समझ नहीं था कि हम सिर्फ खाना नहीं, यादें जमा कर रहे हैं। आज वो टिफिन नहीं, वो दोस्त नहीं, लेकिन उनकी यादें आज भी चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान ले आती हैं। बिल्कुल सच कहा है आपने, ऐसा ही होता था। वो यादें ही आज हमें जब आती हैं याद, तो हमारे उस दिन के लिए दिन को खुश कर जाती हैं और उस दिन के लिए जीने का सहारा बन जाती हैं। 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं सारिका के साथ।

जी हाँ दोस्तों, स्कूल, बचपन और सपनों की बात हो रही है और साथ में बच्चों की बात हो रही है, तो अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो कुछ ऐसी फिल्मों का जिक्र जरूर होना चाहिए जिन्होंने बच्चों की दुनिया को बहुत संवेदनशील तरीके और खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा। जहां तारे जमीन पर मूवी ने मैसेज दिया कि हर बच्चा अपनी तरह से स्पेशल होता है और उनके टैलेंट को पहचानना जरूरी है, वहीं इकबाल मूवी की बात करें तो ये मूवी मैसेज देती है कि ये अगर हौसला और जुनून हो हमें तो कोई भी बाधा सपनों की राह नहीं रोक सकती। और वहीं स्टेनले का डिब्बा मूवी ने स्कूल जीवन की मासूमियत और दोस्ती की मिठास को सामने रखा। और मूवी सीक्रेट सुपरस्टार ने एक छोटी सी बच्ची के बड़े सपनों की कहानी सुनाई। बात करें चिल्लर पार्टी जैसी मूवी की तो ये बात निकल कर आई कि बच्चे सिर्फ भविष्य नहीं वर्तमान में भी बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। वैसे दोस्तों, हर बच्चे के भीतर एक कहानी होती है, बस जरूरत होती है उसे समझने, सुनने और आगे बढ़ने का मौका देने की। फिलहाल हमारी स्क्रीन पर एक और मेल पॉपअप हो रहा है जो है पनकी गंगागंज से रोली सक्सेना का। जी हाँ, इन्होंने लिख भेजा है अपनी स्कूल की यादों को ताजा करते हुए कि स्कूल में बातें हम बहुत करते थे और बातें करने पर जब चेयर पर खड़ी होने की सजा मिलती थी तो बहुत मजा आता था। भाई क्या बात है रोली। और आगे इन्होंने लिखा है कि और दूसरी सजा जो अच्छी लगती थी हमें वो थी कि जब लंच करते और क्लास के बीच में पकड़ लिए जाते थे, पूरा ग्रुप हमारा जो होता था वो पकड़ लिया जाता था तो सजा मिलती थी कि अब क्लास से बाहर जाओ। तो जब क्लास से बाहर जाने का वक्त आता था हम सभी फ्रेंड्स साथ में बाहर आ जाते थे और वो भी धीरे धीरे, सजा का मतलब जो मजा होता था वो धीरे धीरे आता था क्योंकि एक एक करके हमारी जो फ्रेंड्स थी बाहर आती थी और उस सजा का जो क्रेज था, मजा था, बढ़ता जाता था और फिर हम सब खूब मस्ती करते थे। स्कूल के वो दिन आज भी याद हैं और सच में हमारे जो लिसनर्स हमसे कनेक्ट हैं वो भी अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे होंगे और आज जो ये बातें हमसे शेयर कर रहे हैं हमारी सखियां, हमारी सहेलियां, हमारे नन्हे दोस्त, और उन बातों को सुनकर उनको भी अपने स्कूल के दिनों की याद आ रही होगी। वैसे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों से पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनना है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है ये पूछना कि उन्हें करना क्या अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार बच्चों की असली पहचान उनके मार्क्स में नहीं बल्कि उनके इंटरेस्ट में, उनके इमेजिनेशन में छुपी होती है। तो दोस्तों, जब कल से मोस्टली हर स्कूल में एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है तो ये सिर्फ नई किताबें खोलने का टाइम नहीं है बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज के डोर्स ओपन करने का भी टाइम है। तो ये क्वेश्चन है पेरेंट्स के लिए, क्या आपको अपने बच्चे की कोई ऐसी खास बात याद है जिस पर आपको गर्व हुआ हो, उसकी कोई पहली कविता, पहला मेडल, पहली ड्राइंग या फिर कोई छोटी सी उपलब्धि? सोचिए।

रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार। वैसे दोस्तों, ये जो बातें हम बच्चों की कर रहे हैं ये काल्पनिक नहीं है। अगर बात हो अपने कानपुर की तो कानपुर के जो बच्चे हैं वो भी किसी से कम नहीं। जी हाँ, हाल ही में नरवल की स्टूडेंट शिवानी अपनी सुंदर हैंडराइटिंग की वजह से चर्चा में आई। इनकी लिखावट इतनी शानदार थी कि इनकी प्रतिभा की गूंज इंग्लैंड तक पहुंची और वहां से इनके लिए विशेष कैलीग्राफी बुक्स और पेंस भेजे गए और अपने कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्वयं इन्हें बुलाकर सम्मानित किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। वहीं दोस्तों, विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में भी कानपुर के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। जी हाँ, राष्ट्रीय नवाचार अभियान के अंतर्गत आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिताओं में जिले के कई स्टूडेंट्स ने अपने मॉडल और वैज्ञानिक सोच से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। सो डियर लिसनर्स, अगर आपके घर में भी कोई बच्चा चित्र बनाना पसंद करता है, गाना गाता है, खेलता है, लिखता है या नई नई चीजें सोचता है तो उनके सपनों को जरूर उड़ान दीजिए। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट है आप।

वैसे दोस्तों, आज जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों की अचीवमेंट्स, उनके ड्रीम्स और स्कूल लाइफ की बात करते करते जिक्र उन टीचर्स का भी होना चाहिए जो हर बच्चे की जर्नी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्कूल की बेल सिर्फ बच्चों की ही नहीं बुलाती बल्कि उन टीचर्स को भी बुलाती है जो हर साल ना जाने कितने सपनों को शेप देते हैं। कई बार टीचर की एक छोटी सी अप्रिशिएशन और कॉपी पर लिखा वेरी गुड या फिर बोला गया यू कैन डू इट, बच्चे का कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ा जाता है। और कितनी अच्छी बात है कि इसी जुलाई महीने में हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर। जो जीवन को सही दिशा दे वही गुरु। वैसे एक सक्सेसफुल पर्सन की जो स्टोरी होती है उसमें कहीं ना कहीं किसी टीचर या मेंटोर का योगदान बहुत जरूर होता है। तो कह सकते हैं कि जुलाई का महीना सिर्फ हरियाली और बारिश का नहीं बल्कि लर्निंग, ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट और न्यू बिगनिंग का महीना भी है। 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार और इस प्रोग्राम को आप सारिका के साथ एंजॉय कर रहे हैं।

तो बच्चों, स्कूल की घंटी बज चुकी है। स्पेशल प्रोग्राम रस बहार को अब यहीं वाइंड अप करने की दीजिए इजाजत सारिका शुक्ला को। ब्रेक के उस पार मिलते हैं विविधा के तहत लोक रंग कार्यक्रम के साथ।

नमस्कार, पूर्वान के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने कल राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर जीएनएसएस की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी संभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों और राजस्व अधिकारियों से कहा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इस अभियान का लाभ निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश

शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा आज से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। टीईटी परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकल विहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम परीक्षा पर नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कड़ी चौकसी के बीच यूपीटीईटी 2026 परीक्षा सुचारू रूप से जारी है। जौनपुर में 23 केंद्रों पर 3 दिनों तक 56,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। फरुखाबाद में 19 केंद्रों पर 31,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल 2 से 4 जुलाई तक गोरखपुर लखनऊ के बीच अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। ट्रेनों की स्थिति की जानकारी एनटीईएस ऐप, रेलवे हेल्पलाइन 139 तथा नजदीकी स्टेशन से प्राप्त की जा सकती है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयुर्विज्ञान के लिए गठित किए गए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एनबीईएमएस ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तारीखों और ऑनलाइन आवेदनों की घोषणा कर दी है। नीट पीजी 2026 परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त को किया जाएगा। उम्मीदवार 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने और अन्य सूचना बुलेटिन के लिए उम्मीदवार एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट natbord.edu.in पर भी जा सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: भाई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
1: भाई अब मैच का क्या होगा?
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
2: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-444-444।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
5: 10:03 आपकी सखी राखी एक बार फिर आपके साथ है सुपर हिट प्रोग्राम्स लेकर 100.7 FM रेनबो पर। बैक टू बैक सुनिए सिलसिला गानों का, खूबसूरत हसीन बेहतरीन गाने इस खूबसूरत मौसम को चार चांद लगाते हुए आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर। एंजॉय करते रहिए।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मैं हूँ मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

10:33 हो रहे हैं दोस्तों, और अब सुपर हिट सॉन्ग्स को वाइंड अप करने का टाइम हो गया है। अगला कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे लेकर फिर से एक बार हाजिर हो गया आपकी सकीरा की। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, क्योंकि यही है धड़कन लखनऊ की।

हेलो डियर लिसनर्स, वेलकम टू द शो हमनवा। शहर वही है, रास्ते वही हैं, लेकिन मौसम ने जैसे हर मंजर को नया कर दिया है। जहां आज बादलों ने बारिश से दोस्ती कर ली है, वहीं कानपुर ने जुलाई

0: का मुस्कुराकर स्वागत कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सारिका, लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम हमनवा। और आज इस प्रोग्राम में मेरी हमनवा है सीमा।
1: नमस्कार सारिका, आपको भी और हमारे सभी सुनने वाले दोस्तों को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार सीमा जी, आपको भी नमस्कार जी।
1: वैसे सारिका जी, सच कहूँ तो जुलाई के दिनों का भी अपना ही अलग अंदाज होता है। कभी बादल कहते हैं आज बरसेंगे, तो कभी धूप मुस्कुराकर कहती है जरा हम भी चमकेंगे। पर जो कॉमन है वो ये है कि अपना कानपुर हर मौसम के मस्ती के अंदाज में जीता है।
0: बिल्कुल सही बात कही सीमा तुमने। जहां कानपुर अपनी मस्ती के अंदाज में जीता है, वहीं अपनी जिम्मेदारी भी जानता है। और यही वजह है कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चल रहे वन महोत्सव अभियान में कानपुर भी इस मुहिम में पूरी शिद्दत से शामिल हो रहा है।
1: बिल्कुल। वैसे ये बताइए कि आपने कौन सा पौधा लगाया है इस सीजन में, या आपका प्लान बन रहा है अभी भी लगाने का?
0: अरे नहीं नहीं, प्लान नहीं बन रहा है सीमा, बल्कि मैंने इस बार ना तुलसी का पौधा लगाया है।
1: और क्या बात है?
0: तुलसी जो है ना, हमारे घर आंगन की पहचान भी होती है। वैसे इसकी खुशबू भी जो वातावरण है उसको फ्रेशनेस से भर देती है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब तुलसी का पौधा घर में लगा होता है।
1: फ्रेशनेस के साथ ही आपको ये भी मालूम है कि तुलसी का पौधा बहुत महत्व रखता है आयुर्वेद में। इस वन महोत्सव की शुरुआत ऐसे पौधे से करें जो हरियाली के साथ प्रकृति से जुड़ने का एहसास भी कराए, कितनी अच्छी बात है ना ये?
0: बिल्कुल सही कहा सीमा। वैसे इस बदलते मौसम में ना अपने शहर का मिजाज भी बदल रहा है। स्कूल खुल गए हैं, रंग बिरंगी ड्रेस में बच्चे छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ चले हैं, है ना। और साथ ही बच्चों के जो टिफिन है वो तैयार करने के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं वो भी जैसे उन्होंने रफ्तार पकड़ ली है। सुबह से ही लेकर रात तक जो भागम भाग वाला उनका सिस्टम है ना, वो मतलब शुरू हो चुका है और 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, रफ्तार पकड़ ली गई है।
1: बिल्कुल सही कह रही है आप। तो जब बात रफ्तार की है, तो अपना कानपुर भी तो नई रफ्तार की ओर बढ़ रहा है। मेट्रो का विस्तार देखिए हो रहा है हमारे यहाँ शहर में, और हम सब भी इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब सेंट्रल से नौबस्ता तक का सफर मेट्रो से और भी आसान हो जाएगा, और हम IIT कानपुर से नौबस्ता तक एक ही मेट्रो से आसानी से सफर तय कर सकेंगे। तो बेहद खास ये पल होने वाले हैं जिसका हम सभी को बेसब्री से है इंतजार।
0: राइट सीमा, तो रफ्तार तो अपना अपना कार्यक्रम जो है हमनवा वो भी पकड़ने वाला है अपनी कुछ जो दिलचस्प बातें हैं उनके साथ।
1: बिल्कुल। तो प्रोग्राम में आज चर्चा होगी शिमला समझौते के वर्षगांठ की, साथ ही हम बात करेंगे वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के भी,
0: त्रिभाषा सूत्र के बारे में भी हम बात करेंगे, और साथ ही स्टेम एजुकेशन और छात्राएं इस पर भी होगी कुछ चर्चा।
1: स्टार्टअप के जरिए हम साझा करेंगे आपसे कानपुर के अंकित साहनी के स्टार्टअप को, और आज की रेसिपी में क्या है खास ये थोड़ा सा सीक्रेट है, पर अगर आपके पास कोई रेसिपी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कीजिए साझा।
0: बिल्कुल। या फिर प्रोग्राम में किसी भी टॉपिक के साथ आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, या फिर इस वन महोत्सव में कौन सा पेड़ जो है वो आप लगाने वाले हैं या आप लगा चुके हैं,
1: या बारिश के मौसम में भाई आप इससे रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है या कोई भी आइडिया हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है।
0: बिल्कुल, हमारा ईमेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com।
1: फिलहाल अपनी बातों का सिलसिला यहीं थोड़ी देर के लिए हम थामते हैं, साथ ही थाम लेते हैं संगीत का हाथ। प्रोग्राम हम नवा का पहला ट्रैक पहुंच रहा है आप तक, बेहद ही खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा ये ट्रैक पहुंचा रहे हैं हम आप तक।
0: और ये रहा

0: सीमा, हम भी अब बढ़ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ।
1: अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इस सेगमेंट की तरफ हम कुछ बात करें, उससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कि बताइए,
0: क्वेश्चन लेके आई हूं।
1: थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में है ये क्वेश्चन आपके लिए, बताइए कि दिल तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता क्या है?
0: मेरे अकॉर्डिंग मे बी अगर आप किसी को अच्छा खाना खिला दो तो शायद किसी के दिल तक पहुंचा जा सकता है।
1: बिल्कुल, ये तो परफेक्ट बात है, लेकिन कुछ और भी है इसके साथ में, थोड़ा सा जोर डाल के दिमाग पे क्या हो सकती है
0: तो
1: वो बात।
0: अगर हम किसी की तारीफ कर दें तो भी शायद किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं।
1: नॉट बैड, ये भी आंसर सही है, लेकिन ये भी नहीं है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने लिसनर्स के साथ में शेयर करना चाहते हैं। फिलहाल हमारे लिसनर्स के दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त?

0: तो चल रहा होगा, मे बी उन्हें लग रहा होगा कि अगर अच्छे अच्छे खूबसूरत से गाने सुनवा दिए जाएं तो
1: फिलहाल हम ये काम कर रहे हैं
0: बिल्कुल, तो हम दिल तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि हम अपने लिसनर्स के दिल तक उन्हें खूबसूरत से नगमे सुना कर पहुंच रहे हैं उनके दिल तक।
1: जी, मन पसंद बातों के साथ में ना ये सारी चीजें होती रहती है तो वो दिल तक पहुँचने का माध्यम बनी जाती है, लेकिन अभी कुछ छूट रहा है जिसके बारे में भाई हम बात करने वाले हैं।
0: तो अगर सीमा ये मेरी जो अब परेशानी है इसको तुम ही बता दो तो ज्यादा बेटर होगा।
1: चलिए तो ये बात यहाँ हम क्लियर करें और यही हमारा आज का टॉपिक है कि किसी के दिल तक पहुंचने का सबसे आसान जो रास्ता होता है वो भाषा से यानी लैंग्वेज से होकर गुजरता है। भाषा, भावना, संस्कारों और संस्कृति का सबसे सुंदर माध्यम है सारिका जी अपनी बात को एक्सप्रेस करने का।
0: बिल्कुल, जैसे कि तुमने अभी इस बारे में इतना घुमाया एक्सप्रेस करने के लिए मुझे तो अगर कोई आपसे पहली बार मिले है ना सीमा और आपकी भाषा में मुस्कुरा कर कहे नमस्ते कैसे हैं आप तो एक अपनापन सा महसूस होने लगता।
1: बिल्कुल, आप सोचिए परदेश में कोई आपकी भाषा में बोले तो अपनीपन वाली फीलिंग आ ही जाती है। यही कमाल है भाषा का जो सिर्फ शब्द नहीं रिश्ते बनाने की भी ताकत है। और हमारे देश की तो खूबसूरती यही है कि यहाँ कुछ किलोमीटर पर बोली बदल जाती है।
0: बिल्कुल, कहीं नमस्ते, कहीं वनक्कम, कहीं केमचो, कहीं सत श्री अकाल और शब्द भले ही अलग हो लेकिन भाव एक ही है सम्मान और अपनेपन का।
1: तो आपको बता दें कि ऐसे ही भाषाई सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है त्रिभाषा सूत्र। आखिर क्या है ये त्रिभाषा सूत्र?
0: त्रिभाषा सूत्र का मतलब है कि विद्यार्थियों को तीन भाषा सीखने का अवसर मिले जिसका उद्देश्य देश की भाषाई विविधता का सम्मान करना और विभिन्न जो राज्यों के लोगों के बीच बेहतर संवाद और समझ को विकसित करना भी है।
1: हाँ, तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी हमारी हिंदी या अंग्रेजी और तीसरी कोई दूसरी भारतीय भाषा का अध्ययन करना है। आज के दौर में जब लोग पढ़ाई और नौकरी व्यवसाय के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं या देश के बाहर जा रहे हैं तब एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान दोस्तों सिर्फ सुविधा ही नहीं बल्कि कम्युनिकेट करने की भी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है।
0: क्या बात है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार त्रिभाषा सूत्र को इसकी मूल भावना के साथ आगे बढ़ाया गया है कि छोटे बच्चों की शुरुआती जो कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में हो क्योंकि बच्चा जिस भाषा को बचपन से सुनता और बोलता है उसी में ही वो सबसे अच्छी तरह सीखता और समझता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि साथ ही ये शिक्षा नीति ये भी स्पष्ट करती है कि किसी भाषा को किसी पर थोपा नहीं जाएगा। उद्देश्य इतना है कि बच्चे बहुभाषीय बने, सीखने की उनकी क्षमता बढ़े और देश की भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता का सम्मान वो करें। और साथ ही
0: जी सीमा एक चीज जो हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए इस बारे में राहत की खबर है कि शिक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंग अब क्लास 7th, 8th और 9th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने तीन भाषा नीति के तहत दो विदेशी भाषाओं को चूज किया है वो 10th क्लास तक उसी भाषा संयोजन के साथ जो पढ़ाई है आगे की वो जारी रख सकते हैं। इन्हें बीच में अपने जो सब्जेक्ट है उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है।
1: तो उसी के हिसाब से वो वहां पे उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो साथ ही ये जो हम भाषा की यहाँ बात कर रहे हैं, सूत्र की बात कर रहे हैं, ये हमें संदेश देती है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम ही नहीं है बल्कि संस्कृति से एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति को जोड़ने का, दिलों के बीच अपनापन बढ़ाने का सबसे सुंदर सेतु भी है।
0: क्योंकि विविधता जो होती है ना वही हमारे सबसे बड़ी पहचान है। और फिलहाल इस प्रोग्राम की जो पहचान
1: ये भी
0: है।
1: पहचान ये गीत बता रहा है तो अपने लिसनर्स को सुनवा रहे हो और ये गीत बेहद ही खूबसूरत सा है तो मुझे लग रहा है
0: और ये आज की जोड़ी को सुपर डुपर हिट कर देगा।

0: जी हाँ, प्रोग्राम हमनवा में आज जो जोड़ी है वो है सारिका और सीमा की, और अभी हम बात कर रहे थे एजुकेशन की, है ना सीमा
1: जी? हम बात कर रहे थे त्रिभाषा सूत्र की,
0: बिल्कुल।
1: और जो अगला हमारा टॉपिक है वो भी कुछ इसी से ही जुड़ा हुआ है,
0: शिक्षा से बिल्कुल रिलेटेड है। और अब बात एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि देश के भविष्य से भी जुड़ा है।
1: जी, तो आपका इशारा हम यहाँ समझ गए।

0: हैं आपकी सोर इशारा करें स्टेम एजुकेशन यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की बात कर रही हैं।
1: जी सीमा, यही वो चार क्षेत्र हैं जिन पर आज की दुनिया के नए आविष्कार, नई तकनीक और भविष्य की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है।
0: बिल्कुल, एक सवाल भी है कि क्या हमारी बेटियां भी इन क्षेत्रों में बराबरी से आगे बढ़ रही हैं?
1: सोचने वाली बात है। वैसे सीमा, आज छात्राएं विज्ञान, तकनीकी और इंजीनियरिंग की ओर कदम बढ़ा रही हैं, फिर भी दुनिया भर में इस क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है वो अभी भी बढ़ाने की जरूरत है।
0: तो यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन भी लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि लड़कियों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम शिक्षा में बराबर का अवसर मिले।
1: बिल्कुल, स्टेम का मतलब जो है वो इन विषयों को पढ़ना ही नहीं बल्कि सवाल पूछना, प्रयोग करना, नई सोच विकसित करना और जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढना भी है, क्योंकि यही कौशल बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं।
0: और अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में इस दिशा में कई पहले की जा रही हैं, जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का अनुभव आधारित शिक्षा जहां नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती है।
1: वहीं अगर बात करें अटल टिंकरिंग लैब्स जैसी पहल की तो इसके माध्यम से स्कूलों में बच्चों को रोबोटिक्स, 3D डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इनोवेशन को प्रैक्टिकली सिखाया जा रहा है।
0: जी, और जब बेटियां ऐसे अवसरों तक पहुंचती हैं दोस्तों, तो वे सिर्फ अपनी सफलता की कहानी नहीं लिखती हैं बल्कि समाज के लिए नई राहें भी खोलती हैं।
1: बिल्कुल सही बात कही सीमा। और जैसे कि टेसी थॉमस की बात करें, जिन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्होंने भारत के लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: वही ऋतु करथल, जो मंगलयान और चंद्रमा अभियानों से जुड़ी रही, गगनदीप और विश्व की अग्रणी बायोमेडिकल वैज्ञानिक में से एक रही जिनका स्वास्थ्य और वैक्सीन अनुसंधान में विशेष योगदान रहा।
1: और अगर हम बात करें अपने कानपुर की तो बुशरा अतीक, जो IIT कानपुर के जैविक विज्ञान एवं जैव अभियांत्रिकी विभाग की प्रोफेसर हैं, इन्हें कैंसर अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च भी मिला।
0: बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि स्टेम शिक्षा हमें ये सिखाती है कि हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है अगर जिज्ञासा, मेहनत और सीखने का जुनून हो।
1: तो इसलिए जरूरी है कि घर, स्कूल और समाज मिलकर बेटियों को ये भरोसा दे कि विज्ञान और तकनीक की दुनिया भी इनकी अपनी ही दुनिया है।
0: क्योंकि जब बेटियां स्टेम शिक्षा से जुड़ती हैं तो सिर्फ इनका भविष्य ही नहीं बल्कि पूरे समाज का उज्जवल भविष्य बनाती हैं।
1: फिलहाल स्टेम एजुकेशन से रिलेटेड अपने विचार हमसे साझा कर रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सैफाली।
2: Today we are going to talk about STEM, STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. And you must be thinking, these subjects we already know what is special. But STEM is not separate subject to be taught. It's an interdisciplinary approach, helpful and is designed for those kids right from preschool to going to college. STEM integrates these subjects to reflect how these subjects work in real-world application. For example, in a project, students might design a model of a bridge. The designing part is engineering. Children will also calculate the load-bearing capacity. That's mathematics. They will use software stress. That's technology. And test materials for strength. And that's science. STEM-based approach prepares students for future careers and helps them understand how knowledge connects across disciplines.
0: और इसी पर ही अपने विचार हमसे साझा करें हमारे शहर की महिला हैं निशा मिश्रा जी, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है।
2: Today we are going to talk about STEM, STEM, Science, Technology, Engineering.
3: हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है निशा मिश्रा। आज मैं बात करती हूँ एक ऐसे विषय की जो बेटियों के भविष्य को नई उड़ान दे सकता है, यानी कि स्टेम एजुकेशन। इस स्टेम एजुकेशन क्या होता है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसके बारे

0: में बताया जाता है। और आज की जो दुनिया है वो तेज़ी से बदल रही है, ऐसे में ज़रूरी है कि हमारी बेटियां भी विज्ञान यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ें। स्टेम शिक्षा उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि नई सोच, समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता और आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस भी देती है। जब एक लड़की स्टेम चुनती है तो वह सिर्फ अपना भविष्य नहीं बनाती बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर डेवलप या अंतरिक्ष शोधकर्ता, हर क्षेत्र में बेटियां अपनी पहचान बना रही हैं। यदि हमारी बेटियों को स्टेम एजुकेशन दिया जाए, अच्छी शिक्षा मिलेगी उन्हें, तो ही वो आगे बढ़ेंगी। जब वो आगे बढ़ेंगी तो ही हमारा समाज, देश, परिवार सब हमारा आगे बढ़ेगा और बेटियों से ही समाज बनता है। आइए हम सब मिलकर हर बेटी को सीखने, सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अवसर दें, क्योंकि जब बेटियां स्टेम में आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग भी अपनी अपनी बेटियों को स्टेम शिक्षा के बारे में या स्टेम एजुकेशन के बारे में जागरूक करें और उनको भी अच्छी शिक्षा दें, स्टेम एजुकेशन कराएं, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। और जैसे कि जो सरकार है उन्होंने एक योजना चालू करी थी बेटियों के ऊपर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब जैसे कि बहुत सारे कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पर बेटियों को आगे शिक्षा नहीं दी जाती है, उनको बस यही कहा जाता है कि नहीं सिर्फ घर का काम ही करना है। ऐसा ये सब जो थिंकिंग है ये बहुत ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सरकार ने ये होता कि बेटी बचाओ, हमको बेटियों को पैदा करना है, बेटियां आगे बढ़ाना है और बेटियों को पढ़ा करके अपने जो समाज है उसको आगे बढ़ाना है। जब बेटियां हैं तभी ये समाज है, अगर बेटी नहीं रहेगी तो समाज नहीं रहेगा। इसलिए बेटियों को अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके, जब वो आगे बढ़ेंगी तो हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। सो थैंक यू।
1: जी हाँ, अगर बेटियाँ स्टेम के थ्रू आगे बढ़ेंगी तो कह सकते हैं कि सिस्टम भी आगे बढ़ेगा।
2: बिल्कुल, बेहद ही खूबसूरत सी बात बोली है आपने और ये जो संदेश हमारी अभी महिलाओं ने साझा किए यहाँ पे बेहद ही खूबसूरत से संदेश थे। तो अब इन्हीं के साथ ही हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अपने लिसनर्स को एंजॉय कराएंगे ऐसा ही एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक जो पहुँच रहा है आप सभी तक।

0: जी हाँ, तो भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माएं, ब्यूटीफुल सा ट्रैक पहुंचा आप तक। तो जब हम किसी चीज को विजुलाइज करते हैं तो तमाम सारी चीजें आंखों के सामने आने लगती हैं।
1: बिल्कुल, और वो जो घटना होती है उसकी झलक कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाती है। हम उसको इमेजिन करने लगते हैं कि वहां पर क्या चल रहा होगा, जिस तरह से अगर हम कानों में उस चीज को सुनते हैं।
0: बिल्कुल, तो एक ऐसा दौर था भाई जब देखने वाला कोई माध्यम नहीं होता था, मनोरंजन के लिए सिर्फ एक साथी हमारे साथ होता था, वो था हमारा रेडियो। तमाम प्रोग्राम्स को सुनने के लिए सभी के कान इसी पे ही लगे होते थे, हम तरह तरह की चीजें विजुलाइज करते रहते थे वहां पे। नहीं,
1: बिल्कुल। और सीमा, याद आता है वो दौर जब घरों में सिर्फ रेडियो एकमात्र ऐसा साधन होता था, और हमारे घर के दादाजी और पिताजी सभी रेडियो के अगर कमेंट्री आ रही है तो कान लगा करके वहां पर चिपक से जाते थे, और जो अगर भारत की जीत हुई तो जश्न का माहौल घर में, अगर हार हुई बाय चांस तो कहीं ना कहीं हम सबको भी पिटना होता था।
0: बिल्कुल, तो कहीं वो सारी चीजों से हम रिलेट कर जाते थे, मतलब चीजें मैदान पे चल रही होती थी लेकिन रोमांच क्या होता था, हम सब सुनने वालों के जो जहन में होता था, हमारे दिलों में होता था कि बॉलर ने कैसी गेंद फेंकी, अंपायर की उंगली उठी या नहीं उठी, हम सब विजुलाइज एक एक छोटी छोटी सी बात को करते थे। पुरानी यादों का अपना ही अलग एहसास है और आज का दिन भी इसी एहसास के रोमांच से जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल, और याद करने का टाइम है वो दौर जब घर पर टीवी नहीं होता था हमारे मनोरंजन के लिए, होता था तो सिर्फ एक साथी हमारा रेडियो तमाम प्रोग्राम्स को सुनने के लिए, सभी के कान इसी पे लगे होते थे। और आज 2 जुलाई है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, यानी विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। जब आज इस दिन को मना रहे हैं तो हम उस दौर में खो जाते हैं जब खेल पत्रकारिता की असली ABCD इसी रेडियो माइक से शुरू हुआ करती थी।
0: बिल्कुल, सोचिए उस दौर में जब आंखों के सामने कोई स्क्रीन नहीं थी, तब रेडियो के जाबाज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और कमेंटेटर्स अपनी आवाज से पूरे मैदान को खड़ा कर देते थे, नहीं विजुलाइज करते थे हम।
1: सीमा, खेल का जो मैदान चाहे कोई भी रहा हो, क्रिकेट की पिच रही हो, फुटबॉल का ग्राउंड रहा हो या ओलंपिक का ट्रैक, खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से इतिहास रचा, लेकिन इस इतिहास को शब्दों में पिरोकर जज्बात बनाकर हमारे दिलों तक पहुंचाया हमारे खेल पत्रकार, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे खेल पत्रकारों ने इसको आगे बढ़ाया है, जो हर मुकाबले की नब्ज पर नजर रखते हैं, खिलाड़ियों के स्ट्रगल को शब्द देते हैं, खेल के शानदार पलों को, हर मौसम माहौल को अपने कैमरे और कलम और आवाज में कैद करने वाले हमारे पत्रकार।
1: बिल्कुल, जो खिलाड़ी के हार के जो आंसू भी हम तक पहुंचाते हैं और उनकी जीत का जश्न, जैसा कि अभी हमने कहा कि घर में भी हमारे ऐसा ही माहौल हो जाता था वो कमेंट्री सुन करके।
0: तो आज बिल्कुल आज का दिन बेहद है खास, क्योंकि इस दिन वर्ष 1924 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, और इस दिन को मनाने की शुरुआत की अगर हम बात करें तो साल 1994 में इसी एसोसिएशन की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य के साथ ही इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई।
1: बिल्कुल, जो दुनिया भर के खेल पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करती है, फिलहाल जिसका मकसद भी सिर्फ खेल की खबरें ही नहीं देना है बल्कि भावना को जिंदा रखना है और खेल पत्रकारिता में ईमानदारी को बढ़ावा देना है।
0: तो बिल्कुल हमारी ओर से आज के दिन को आप सभी खेल जर्नलिस्ट को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे हार्दिक बधाई आप तक पहुंचे, हम ऐसी कामना करते हैं। फिलहाल एक ऐसा ही गीत आप लिसनर्स तक हम पहुंचा रहे हैं और ये बेहद खूबसूरत सा गाना है, पहुंच रहा है आप तक इस वक्त।
1: एंजॉय कीजिए
0: जी।

0: जी हाँ, और ऐसा ही पत्रकारिता से संबंधित जो एक मैसेज है, मेल है, हमें मिल गया है। और ये किसका है, सीमा पढ़ो आगे।
1: जी हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे, आज हम खेल पत्रकार दिवस मना रहे, पत्रकारिता दिवस मना रहे, इसी पर ही भैया मोनू सेठ जी का मैसेज हम तक पहुंच चुका है ईमेल के माध्यम से, और बेहद ही खूबसूरत सा इन्होंने मैसेज शेयर किया। और यादें हैं ये तमाम सारी इनकी, क्लास 7 पे जब ये स्कूल जाते थे तो छोटा वाला मोबाइल जो है क्रिकेट सुनने के लिए ले जाते थे, चुपके से सुनते थे। एक दिन छोटा वाला रेडियो बिगड़ गया और उस दिन मैच भारत पाकिस्तान का था, फिर क्या बड़ा वाला रेडियो उठाया और अपने बस्ते में लेकर स्कूल गए, चुपके चुपके सुन रहे थे, और इसी के साथ ही आनंद से मजे से ये जो है सुन रहे थे, और किसी ने शिकायत कर दी मास्टर जी से, तो अब अचानक क्लास में आ खड़े हुए मास्टर जी, तो मार खानी पड़ेगी, या मुर्गा भी बना रहे हो, लेकिन रेडियो ने मास्टर साहब को जो है यहाँ पे अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि कमेंट्री चलती रही और हम मुर्गा बने रहे। उस दिन कमेंट्री सभी मास्टर जी ने सुनी और क्रिकेट का आनंद लिया, और आज भी इनके ये मास्टर साहब जी जो है इनको रेडियो मैन के नाम से पुकारते हैं, तो इतनी दीवानगी रेडियो के प्रति थी।
0: बिल्कुल, क्या बात कही है मोनू जी आपने, हम लोग का बचपन जो था वो भी याद दिला दिया है कि रेडियो सुनने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं ऐसे ही डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी, कि कभी कभी पढ़ाई छोड़कर हम भी जुट जाते थे।
1: और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब ट्रांसमिशन खत्म हो जाता था तो भी हम इंतजार करते थे कि और ये टाइम जो
0: शायद

0: आ जाए
1: आ जाए आ जाए ट्यून इन किया करते थे, बैंड बदला करते
0: बिल्कुल
1: थे।
0: तो यादें हैं, यादों का क्या, ये आती जाती रहती है, पर इस दिन को सेलिब्रेट करने का यही मकसद है कि उन सभी पत्रकार भाइयों को सलाम किया जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए जिन्होंने हम तक ऐसी खबरें पहुंचाई। वैसे सीमा, हम आ पहुंचे हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ।
1: तो ये भी कुछ ऐसी ही बात है जिसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। बेहद ही खास बात है, उम्मीद की बात है, भरोसे की बात है और साथ चलने की भी ये बात है, और इतिहास भी इसी से रिलेट करता है, हमें ऐसे पल याद दिलाता है जिन्होंने संवाद और शांति का रास्ता दिखाने की कोशिश की।
0: बिल्कुल, आज 2 जुलाई का दिन भी एक महत्वपूर्ण तारीख के रूप में इतिहास में दर्ज है, क्योंकि इसी दिन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने और भविष्य में मतभेदों को शांतिपूर्ण तथा द्विपक्षीय बातचीत के थ्रू सुलझाने के उद्देश्य से ही ये समझौता किया गया।
0: वैसे इस समझौते में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए, और ये जो समझौता था किसी एक दिन की बातचीत का परिणाम नहीं था सीमा, बल्कि कई दौर की कूटनीतिज्ञ चर्चाओं और आपसी संवाद के बाद ये संभव हुआ था।
1: वैसे इतिहास की हर घटना हमें कोई ना कोई सीख देकर जाती है, शिमला समझौता भी हमें यही याद दिलाता है कि जब बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं तो समाधान भी संभावनाएं बन जाती हैं।
0: बिल्कुल, पॉसिबिलिटी बन जाती है, और शायद इसीलिए कहते हैं कि संवाद, समझ और शांति की कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ सुनवाते हैं अपने लिसनर्स को एक और खूबसूरत सा नगमा।

0: बढ़ती हुई प्रोग्राम के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे। इस वक्त रेनबो की घड़ी में 11:45 का वक्त हो रहा है पूरा, और इस वक्त आप सभी हमसे कनेक्ट हैं हम नवा शो पर, जहां मैं हूं सीमा और मेरे साथ मेरी हम नवा सारिका हैं साथ में।
1: वैसे सीमा कहते हैं कि सोच नहीं हो तो साधारण चीज भी असाधारण बन जाती है। एक छोटा सा ख्याल एक आइडिया बन जाता है और आने वाले कल की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है।
0: क्या खूब बात कही है आपने। तो आज की कहानी भी एक ऐसे ही उद्यमी की है, जहां हमारी पारंपरिक मिठाइयां बन गई एक प्रीमियम एक्स

0: एक्सपीरियंस और यही सोच लेकर आए अंकित साहनी।
1: बड़े ही अनोखे आइडिया के साथ अपने बिजनेस को शुरू करने वाले कानपुर के अंकित ने देखा कि हमारे यहाँ बेहतरीन कॉफी के लिए अलग कैफे जो चेन्स हैं वो हैं और हमारी पारंपरिक मिठाइयों के लिए अलग अलग दुकानें हैं,
0: लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ प्रीमियम कॉफी, बेकरी प्रोडक्ट्स और हमारे भारतीय मिठाइयाँ एक ही छत के नीचे मिल सके। तो बस यही सोच उनको आगे लेकर आई। उन्होंने शुरू किया एक नया स्टार्टअप साल 2019 में। अपनी सोच के साथ पहला आउटलेट खोला और ये फ्यूजन कॉन्सेप्ट था उनका, जहां उन्होंने भारतीय मिठाइयों को नया ट्विस्ट दिया चॉकलेट और हेजलनट का इस्तेमाल करके। कॉफी, पेस्ट्री और पारंपरिक मिठाइयों का ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन जो लाखों लोगों को पसंद आया।
1: और धीरे धीरे इनकी यही सोच, इनका आउटलेट एक शहर में बढ़ता चला गया और कई एक शहर से बढ़कर के कई शहरों तक पहुंच गया और इनका जो ब्रांड,

0: या चॉकलेट और हेजलनट का इस्तेमाल करके कॉफी पेस्ट्री और पारंपरिक मिठाइयों का ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन जो लाखों लोगों को पसंद आया।
1: और धीरे धीरे इनकी यही सोच, इनका आउटलेट एक शहर में बढ़ता चला गया और कई एक शहर से बढ़कर के कई शहरों तक पहुंच गया। और इनका जो ब्रांड, इनका स्टार्टअप आज 7 साल के सफर में 100 करोड़ से ज्यादा के सालाना रेवेन्यू को पार कर चुका है।
0: तो क्या बात है, इनकी स्टार्टअप की शुरुआत इस तरह से हुई और इनका ये सफर जो है शुरू हुआ लखनऊ से, आज ये देश के कई हिस्सों में अपने आउटलेट्स चला रहे हैं। हमारे शहर में नोएडा, दिल्ली, बनारस, आगरा समेत 18 से ज्यादा आउटलेट्स हैं जहां 1000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं।
1: तो अगर आपके पास भी ऐसे कोई विचार हैं तो उन्हें सिर्फ सोच कर मत छोड़िए, पहला कदम जरूर उठाइए। हो सकता है एक जो अगला वाला स्टार्टअप है ये आपकी कहानी बन जाए और हम शेयर करें उसको।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो अपने आइडियाज कभी आपको जो है वो बैक में नहीं लेके जाने देते, जब आप उनको सोचते और कुछ करने की ठानते हैं तो उनसे एक्सपीरियंस ही गेन होता है। भाई सफलता तो बाद की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको शुरुआत करने का मौका देते हैं, तो पीछे कभी मत रहिए।
1: फिलहाल मौका मिल रहा है इस वाले ट्रैक को लिसनर्स तक पहुंचने का।

0: और इसी गाने के साथ ही हम पहुंच चुके हैं अपने सबसे खास सेगमेंट की ओर, जिसका रहता है आप सभी को बेसब्री से इंतजार। तो क्या है आज की रेसिपी जिसे हम लेकर हाजिर हो चुके हैं यहाँ पे?
1: बिल्कुल, तो जैसा कि फूड गाइड टेस्ट एटलस ने दुनिया के 50 सबसे बेहतरीन फ्रोजन डेजर्ट्स की रैंकिंग जारी की है और इसमें भारत के जो पसंदीदा व्यंजन कुल्फी है, इसने भी अपनी अहम जगह बनाई है। वैश्विक सूची में कुल्फी ने दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड को पीछे छोड़ते हुए 7वां स्थान हासिल किया है। तो आज शेयर की जाएगी कुल्फी बनाने की विधि।
0: तो क्या बात है, बहुत सारे लोगों की फेवरेट रेसिपी है और इसीलिए हम लेकर आए मिलेट्स फ्रूट कुल्फी।
1: तो जो सामग्री है, इंग्रेडिएंट्स हैं, जल्दी से शेयर कर दो सीमा तुम लिसनर से।
0: बिल्कुल, इसके लिए आपको लेना है आधा कप

0: कप पका हुआ रागी का ज्वार का आटा, एक कप गाढ़ा दूध, आधा कप पनीर, 8 से 10 भीगे हुए बादाम, 5 से 6 पीस आपको पिस्ते के लेने हैं, 1 बड़ा चम्मच लेना है चिया सीड्स, 1 किलो लेना है और 2 से 3 खजूर बीज निकले हुए लेने हैं, 2 से 3 स्ट्रॉबेरी लेनी है आपको, चीकू लेना है आपको या आम भी ले सकते हैं, और आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर लेना है, कुछ केसर के धागे लेने हैं। तो ये तो है आपकी सामग्री।
1: बिल्कुल, और बनाने की विधि जो है वो इस प्रकार से है। रागी या ज्वार को 1 कप पानी में पकाकर ठंडा कर लेंगे। अब दूध, पनीर, केला, खजूर और जो मेवे हैं इनको एक साथ क्या करना है, ब्लेंड कर लेना है। फिर सीमा इसमें क्या करेंगे कि पका हुआ जो मिलेट था उसको और आधा घंटा करीब लगभग भीगे हुए चिया सीड्स, इलायची और बारीक चॉप्ड जो फल हमने लिए थे उनको भी मिला देंगे और केसर को साथ में मिला देंगे। अब इस पेस्ट को क्या करेंगे कि कुल्फी मोल्ड में भरकर 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे और फिर जमने के बाद जब सर्व करेंगे तो ऊपर से कटे पिस्ते डालकर सर्व करेंगे।
0: क्या बात है, तो ये तैयार हो गई है भैया आपकी स्पेशल इस सीजन वाली रेसिपी जो बेहद ही हेल्दी भी है। यहाँ पे
1: मिलेट फ्रूट कुल्फी और जो इसके फायदे हैं,
0: इसके फायदे हैं कि दूध, पनीर, चिया सीड्स, मेवे से प्रोटीन से भरपूर है ये रेसिपी, वहीं मोटा अनाज भी इसमें यूज किया गया है जो कैल्शियम, आयरन और फाइबर रिच है। गर्मी में ठंडक तो देती ही है लेकिन पोषण से भी भरपूर है
1: और फिलहाल अपने भारत की शान बन चुकी है।
0: जी, और इसी के साथ ही प्रोग्राम में अगला शान भी बन चुका है ये आने वाला ट्रैक।

0: और इसी के साथ प्रोग्राम हमनवा से दीजिए सारिका
1: और सीमा को इजाजत, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, दोपहर के 12 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता करेंगे। ये सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण करेगा। इसमें पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ताकायची के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकायची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी का औपचारिक रूप से राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज जनपद से ऑनलाइन सम्मिलित हुए। बीबीजी रामजी गारंटी अधिनियम 2025 कल से पूरे देश में लागू हो गया है। इस अधिनियम के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों के गारंटीकृत श्रम रोजगार का वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा। सरकार ने बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पारिश्रमिक की संशोधित दरें भी अधिसूचित की हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 दिन की यह वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए एसआईटी ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। अमरोहा में जून माह में पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष यातायात अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 11,405 चालान किए गए और 55 वाहनों के विरुद्ध सीज की कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सुरक्षित वाहन चलाएं, नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अपना योगदान दें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
4: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
5: शत्रुपा से माँ जी।
6: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
5: शत्रुपा से।
7: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हूँ इतना सब?
5: शत्रुपा से।
8: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
9: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
10: हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? एंड आप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मौसम ने करवट ली है। ये जो हल्की हल्की बारिश हुई ना, इससे कहते हैं जो मौसम होता है उसका मूड पर बहुत असर होता है। एंड आई होप कि आप सबका मूड खूब अच्छा होगा। एंड अच्छे मौसम, अच्छे बारिश की हम उम्मीद कर रहे हैं कि खूब बारिश हो, खूब मजे हों, और साथ ही अपना आपको खास ध्यान रखना, ये भी आप जानते हैं। और आज का दिन आप जानते हैं क्यों खास होता है, क्योंकि भाई आज हम इंटीरियर की बात करते हैं, घर को सजाने की बात करते हैं। और घर सजा हुआ सुंदर किसे नहीं लगता, सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। शिल्पी आ चुकी है आज आपके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर, और आज हम खास बातें करेंगे। खास बातें इसलिए क्योंकि मैंने बारिश की बात की, और बारिश इंटरकनेक्ट होती है पेड़ पौधों से, यानी कि बारिश में जब पेड़ों पर पानी की फुहारें पड़ती हैं तो वो और खिलखिलाते और खुश होते नजर आते, जैसे लगता है उन्हें इसकी कब से जरूरत थी। और हम भी इन खिलखिलाते हंसते हुए चेहरों को देखकर, यानी पौधों को देखकर, अपने को बहुत तरोताजा फील करते हैं। वेल, तरोताजा तो हम तब भी फील करते हैं जब हम खूबसूरत से ट्रैक एंजॉय करते हैं, और वो आप एंजॉय करते हैं 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की। तो सुनते रहिए आज का शत्रुपा मेरे साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: वेल, हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, और जो नहीं जानते उन्हें मैंने बता दिया। अब हम सब ये जानते हैं कि जो पेड़ होते हैं यानी जो ट्रीज हैं, वो हमारे लाइफ का बेस हैं, यानी जिंदगी का आधार हैं ये पेड़ पौधे, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में। तो क्यों ना हम अपने घर को इनसे सजाएं। वह जब भी हम जाते हैं पेड़ पौधे लेने के लिए तो मन करता हर पौधा खरीद लो, लेकिन जब पौधों से घर की सजावट की बात हो तो शुरुआत आपको छोटे स्तर से करनी चाहिए। कुछ आसानी से उगने वाले पौधे खरीदिए जिनकी बहुत ज़्यादा देखभाल अभी आपको ज़रूरत ना हो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। तो कुछ ऐसे पौधे करिए जिन्हें कम खरीद करके और कम देखभाल करके आप अपने घर को खूबसूरत बना सकती हैं। तो वो कौन से पौधे हैं जिन्हें आप खरीदिए और अपने घर को एक डिफरेंट लुक दीजिए, ये सब आज हम जानेंगे और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। साथ ही आप भी हमें बताइए कि आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए किस तरह के पौधों का यूज़ करती हैं, किस तरह आपने अपने घरों

वो पेड़ पौधों से सजाया है ये आप हमें बताइए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब सुबह का समय होता है और हमें आसपास ग्रीनरी दिखे तो मन बिल्कुल ग्लैड हो जाता है, मन खुश हो जाता है, मन करता है बस इन्हीं के पास बैठे। कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि हमसे बातें कर रहे हैं? हम बैठते हैं और हल्की सी हवा चलती, जब ये झूमते हैं पत्तियाँ हिलती हैं तो लगता है कहीं ना कहीं ये हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनमें भी लाइफ होती है, इनमें भी शायद फीलिंग्स होती हैं। तो चलिए, बातों का सिलसिला तो यूं ही रहेगा जारी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए। एंजॉय करते रहिए 100.7 FM ब्रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

कर देते हैं। और अगर हम डिफरेंट लुक चाहते हैं, यानी घर में सजावट का डिफरेंट लुक चाहते हैं, तो अलग अलग तरह के गमलों में ढेर सारे छोटे छोटे पौधे आप लगा लीजिए। रंग और बनावट में जितनी वैरायटी होगी उतना ही अच्छा होगा। इसलिए पत्तीदार और बेलदार पौधे, फूल और घरेलू पौधे और कैक्टस जैसे पौधे लगाइए। पौधों को भी घर में सजावट की तरह आपको यूज करना, यानी डेकोरेटिव आइटम्स की तरह ही इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि ये घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं और आपका घर कह उठता है वाह क्या बात है।

दोस्तों, आप से अगर कोई कहे कि बाथरूम में आप कुछ पौधों को लगाइए तो आपको लगेगा ये कैसे भाई। तो हम आपको बताते हैं कि बाथरूम में भी आप पौधे लगा सकते हैं, और उन पौधों को लगाइए जिन्हें अधिक नमी पसंद होती है, जैसे कि फर्न है, ऑर्किड है और पीस लिली है। इन जैसे पौधों को शावर से मिलने वाली जो नमी है उसमें ये खूब पनपते हैं। यही नहीं, आप अपनी डेस्कटॉप या फिर बुक शेल्फ या आपकी डाइनिंग टेबल, इन सब पर एयर प्लांट्स जरूर आजमाइए। इन्हें हफ्ते में एक बार वाटर स्प्रे करना पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: नब्बे वर्षों की गौरवशाली यात्रा,
5: विश्वास और संस्कृति की अनमोल धरोहर
4: आकाशवाणी।
6: अपनी शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ हैं आकाशवाणी लखनऊ के प्रथम समाचार वाचक।
7: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों के लिए यज्ञदेव पंडित की हार्दिक बधाई।
8: Tune to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: डोरी आती है ना, आप उससे बांध दीजिए और कहीं पर भी हैंग कर लीजिए। कितना प्यारा, मतलब बहुत अच्छा लगता है।
1: जी बिल्कुल, मैं तो सुन के बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। और अब ये मैं जानना चाहती हूँ दीप्ति आपसे कि अगर ये जो पेन होते हैं, बच्चे बहुत सारे यूज करते हैं, थ्रो करते हैं, और घर पे पेनों का अंबार लग जाता है, पेंसिल्स भी कभी कभी छोटी छोटी पड़ी रहती हैं, उनको भी हम यूज नहीं कर पाते हैं कि क्या करें इन सब चीजों का, क्योंकि उनको फेंकते भी नहीं बनता, क्योंकि ये जाहिर क्या यूज किया जा सकता है, थोड़ा सा दीप्ति ये बताइए।
0: देखिए, ऐसे में आप क्या कीजिए, जो आपके पास बॉटल्स हैं है
1: जी
0: ना, बॉटल्स का क्या करिए कि ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा कट कर दीजिए, जो
1: जी
0: थोड़ा सा स्लोप होता है ना, उतना हिस्सा आप कट कर दीजिए।
1: जी
0: उसके बाद आपके पास जो अखबार आता है ना, अखबार को ले लीजिए कुछ स्क्वायर्स में, उनको
1: जी
0: आप रोल करिए, रोल करके उस जो कट आपने किया है बॉटल का, उस पर थोड़ा सा फेविकोल लगाइए,
1: जी
0: अप्लाई करके जो आपने रोल करके बनाई है अखबार की चीजें, वो उनपे आप लाइन से स्टिक कर दीजिए बारी बारी।
1: जी जी
0: जब वो सूख हो तो उस पर आप मनचाहा कलर कर लीजिए, जो भी आप कलर चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं कि ग्लिटर्स लगा दें, या आपके पास पुराने बटन बड़े होते हैं,
1: हाँ, बहुत सारे बहुत सारे
0: बहुत सारे बटन होते हैं, आप उनको लगा दीजिए। या फिर कभी कोई भी डेकोरेटिव सामान होता है एक्स्ट्रा बच जाता है आपके पास रखा होता है, आप उनको लगा दीजिए। ग्लिटर शीट्स होती हैं, उनके फ्लावर बना लीजिए, उनको फिर स्टिक कर दीजिए। वो एक आपका एक कटलरी सेट, एक पेन स्टैंड ऐसा बन जाता है। आप जो भी आपके एक्स्ट्रा पेन होते हैं, पेंसिल्स होती हैं, आप उसमें उनको इकट्ठा करके रख सकते हैं। इधर उधर रखने से अच्छा कि आप उन्हें रख लीजिए, तो आपका एक बॉटल से पेन स्टैंड अच्छा सा बन सकता है। फ्लावर वास बना सकती हैं आप, है ना, एक पिगी बैंक बना सकती है उस बॉटल से। पिगी बैंक क्या है कि बच्चे अपना आराम से जो भी कॉइन्स वगैरह होते हैं उसमें इकट्ठा करें, और उसके लिए कुछ खास नहीं करना है। आप मम्मी या पापा की हेल्प लीजिए, आप बच्चों से हम यही कहेंगे कि आप खुद से करिए। बॉटल लीजिए, उसमें इतना बड़ा कट बनाइए कि उसमें आप अपना कॉइन या आपका जो नोट है आप उसमें रख सकें।
1: जी जी जी,
0: और उस बॉटल को वो बढ़िया से कलर भी कर लीजिए, आपका पिगी बैंक तैयार हो जाएगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे आपने हमें टिप्स बताए दीप्ति कि किस तरह हम इन वेस्ट चीजों को यूज कर सकते हैं, यानी रीयूज कर सकते हैं, और अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। और आज आपको बता दें कि क्षेत्रूपा में हम इंटीरियर की बात करें, यानी घर को हम कैसे सजा सकते हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन बेकार पड़ी चीजों को ही कुछ ऐसा यूज किया जाए कि जिससे कि वो खूबसूरत भी लगे और हमारा एटमोसफियर को भी किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। तो थैंक यू सो मच दीप्ति, आपने हमसे बात करी और इतनी अच्छी सारी टिप्स हमसे शेयर करी, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मैम।
1: तो भाई ये तो थी दीप्ति, जिन्होंने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतने अच्छे अच्छे टिप्स शेयर करे, एंड आई होप आपको भी ये टिप्स यूजफुल लगे होंगे और आप भी इन टिप्स को जरूर अप्लाई करेंगे। वैसे आप क्रिएटिव बहुत हैं, इनमें आप अपनी क्रिएटिविटी मिक्स कर सकते हैं और अपने घर को और खूबसूरती से सजा सकते हैं, जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम बिना गानों के नहीं सजा लगता है ना। तो भाई एक बढ़िया सा गाना आपके लिए, सुनते रहिए प्रोग्राम शत्रुपा 107 FM रेनबो पर आज शिल्पी के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: यू आर लिस्निंग टू 100.7 FM रेनबो, द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।
3: अभी 12:45 हो गए, तेजी से बढ़ता समय कोई नहीं रोक पाया है, लेकिन हाँ जो समय हमारे पास है उसमें हम कुछ यूजफुल बातें करते हैं तो वो उस समय की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और हमारे टाइम का बेस्ट यूटिलाइज होता है। वेल दोस्तों, अभी ये हमने सुना कि किस तरह से आप ये जो प्लास्टिक सैन को बेस्ट यूज कर सकते हैं सजावट में घर के, या फिर अगर आपकी कुछ और क्रिएटिविटी तो आप बताइए, आप हमें बताइए कि आप किस तरह से इन बेस्ट जो बेकार की चीजें घर में पड़े रहते हैं उनका बेस्ट यूज करते हैं। आप हमें कहां बताएंगे, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप हमें बताइए कि किस तरह आप अपने घर को डेकोरेट करने में इन चीजों का यूज करते हैं। आपकी क्रिएटिविटी भी हम शेयर करना चाहेंगे तमाम लिसनर्स के साथ, 100.7 FM रेनबो के साथ। तो बस यूं ही सुनते रहिए इस खूबसूरत से म्यूजिकल सफर को आज शिल्पी के साथ।

बहुत खूबसूरत सा साफ सुथरा माहौल हम सबको अच्छा लगता है और अपने घर को हम यकीनन बहुत साफ रखते हैं, लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो जो भी हाथ में पैकेट्स हम लिए रहते हैं, वो बिस्किट के पैकेट हो, किसी भी चीज के पैकेट, हम खाते हैं और उसको सड़क पर यूं ही डाल देते हैं, भले ही हमारे सामने कचरे का डिब्बा रखा हो, लेकिन हमें उससे ओवरलुक करके चले जाते हैं क्योंकि हम इससे अपना फर्ज समझते ही नहीं कि हमें अपने सोसाइटी को भी साफ रखना है जहां हम रहते हैं, अपने देश को भी साफ रखना है, ये भी हमारी एक मॉरल ड्यूटी है। और सिर्फ सफाई नहीं रखनी है, हमें उन चीजों को दूर रखना है जो हमारे पर्यावरण के लिए घातक है। अब जैसे कहा जाता है आपसे कई बार कि ये जो पॉलीथिन वाले बैग्स हैं इनको ले जाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, पेपर बैग्स को यूज़ कीजिए, कागज़ के थैलों को यूज़ कीजिए, लेकिन शायद अभी जागरूकता उतनी नहीं फैली है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पर थोड़े लोग भी इसकी शुरुआत करते हैं तो एक बहुत लंबा कारवा बन जाएगा। वैसे हम आपको बता दें, मीनाक्षी का मैसेज मेरे पास आ गया और मीनाक्षी लिखती हैं लखनऊ से, चिन्हट लखनऊ से लिखती हैं, लिखती हैं, मैम घर में इस्तेमाल पड़ी जितनी भी बेकार की चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं यूज़ करना होता है उनका बेस्ट यूज़ करती हूँ, उन्हें घर के डेकोरेशन में सजाती हूँ, इवन जो अखबार आते हैं उनसे उनको मैं किसी भी गम में डिप करके उनको हार्ड बनाने के लिए किसी भी चीज़ को उस पर चिपका के और उसको कलर करके एक बहुत ही खूबसूरत सा आइटम बनाती हूँ, और जब भी मेरे घर कोई आता है तो मैं उसे गिफ्ट करती हूँ और साथ ही एक संदेश भी देती हूँ कि भाई आप भी इसी तरह घर की बेकार पड़ी चीज़ों को यूं ही कचरे में ना फेंक दीजिए, इनका आप जो यूज़ कर सकते हैं वो करिए, और अगर कोई दूसरा नहीं यूज़ कर पा रहा है तो आप खुद उसे गिफ्ट कर दीजिए कुछ चीज़ें, ताकि उनको भी लगे कि भाई इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। दूसरी बात है, इन्होंने एक और चीज़ मीनाक्षी ने बहुत अच्छी लिखी है, और मीनाक्षी लिख रही हैं कि मैम पानी पर भी ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि पानी की जो कमी है वो आगे आने वाले समय में बहुत ख़तरनाक होने वाली है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि पानी को ज़रूर बचाएं, क्योंकि अक्सर अभी भी पानी का लगातार इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, लोग अपनी वाहनों को धोने में पानी का ट्यूब लगा के इस्तेमाल करते हैं, कई बार आपके थ्रू ये मैसेज दिया जाता है या अखबारों में निकलता है, लेकिन इस चीज़ पर शायद पब्लिक ध्यान नहीं देती और उसे लगता है मेरे सिर्फ बचाने से क्या होगा, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ ये छोटे छोटे कदम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे हमारे पर्यावरण को साफ करने में, और साथ ही हम एक दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे, ये चीज़ बहुत एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे तो हम ये कहने के लायक ही नहीं है कि भाई ऐसा करना चाहिए, अरे भाई हम भी कर रहे हैं इसलिए आपको करना चाहिए, आपको देखकर लोग इंस्पायर होंगे और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज आप सोसाइटी में फील करेंगे। और फिलहाल एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है मेरी बातों के बाद इस खूबसूरत गाने के साथ, जिसे आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर।

वाले निवादियों को हसीन रखने का आपका पूरा कर्तव्य है, यानी इस माहौल को, इस देश को, इस धरती को सुंदर आप और हम मिलकर बना सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी चाहिए। फिलहाल 12:55 हो गए, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है, तो बस शिल्पी इजाजत ले रही है प्रोग्राम शत्रुपा से, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में एक बार फिर मैं रहूंगी आपके साथ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी का औपचारिक रूप से राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज जनपद से ऑनलाइन सम्मिलित हुए। वीबीजी रामजी गारंटी अधिनियम 2025 कल से पूरे देश में लागू हो गया है। इस अधिनियम के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों के गारंटीकृत श्रम रोजगार का वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा। सरकार ने वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पारिश्रमिक की संशोधित दरें भी अधिसूचित की है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कड़ी चौकसी के बीच यूपीटीईटी 2026 परीक्षा सुचारू रूप से जारी है। आयोग ने परीक्षा को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ये परीक्षा 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। ये 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। लखनऊ, उन्नाव, फरुखाबाद, अमरोहा सहित प्रदेश के सभी जनपदों में पुलिस प्रशासन के अधिकारी परीक्षाओं के कुशल संचालन के लिए परीक्षा केंद्र पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रदेश में हो रही यूपीटीईटी परीक्षा के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 1,000 बसों का संचालन कर रहा है। निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का अवकाश निरस्त कर दिया गया है। परिवहन निगम यात्रियों की सुविधा के लिए नियंत्रण कक्ष से व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहा है। किसी भी समस्या के समाधान हेतु कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 8726005808 पर संपर्क किया जा सकता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को प्रभावित करने लगा है। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। अयोध्या में रौनाही थाना क्षेत्र में अयोध्या लखनऊ हाईवे पर एक खड़े ट्रक में 4 पहिया वाहन के टकरा जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों का इलाज जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। वाहन सवार लखनऊ से सिद्धार्थनगर जा रहे थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा।
2: जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
4: वायदे के मुताबिक आ चुके हैं शिल्पी एक बार फिर आपके लिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम होटो पे तेरी बात लेकर। होटो पे तेरी बात वो प्रोग्राम जिसमें कि हम आपको कोई टॉपिक देते हैं और आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं, बिंदास खुली, जो भी आपके मन में हो सच सच बताइए। और आज मैं सोच रही थी क्या बात करूं आपसे, बहुत दिमाग लगाया, तब मैंने सोचा अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी अपनों से नाराज हो जाते हैं, चाहे दोस्ती हो चाहे घर में कुछ लोग हों, और नाराजगी में कभी कभी ये रिश्ते खत्म भी हो जाते हैं, यानी कि हम नाराज होकर बात ही नहीं करते और सामने वाला सोचता वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगा, या वो भी नहीं कर रही तो मैं क्यों करूं। तो क्या आप जब किसी से नाराज होते हैं तो ऐसे ही तनातनी रहती है और आप लोगों की बातचीत कंप्लीटली बंद हो जाती है, यानी छोटी सी बात एक तरह से आप लोग का रिश्ता खत्म कर देती है, तो या फिर आप खुद पहल करते हैं और बातचीत करते हैं और उस मसले को वहीं सुलझा देते हैं और जिंदगी में खूबसूरती से आगे बढ़ते हैं। तो आपका दिल क्या कहता है ये आप हमें बताइए। आपको मालूम है कहां भेजना है आपको हमें मेल, fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। और एंजॉय कीजिए म्यूजिकल सफर कुछ अपनी खूबसूरत, हमारी खूबसूरत बातों के साथ। आप लोग के मन में जो भी है वो बिल्कुल हमें खुल के बताइएगा। फिलहाल आप ये गाना एंजॉय कीजिए और उसके बाद होंगी इलाकाई खबरें और उसके बाद जारी रहेगा होठों पे तेरी बात का ये खूबसूरत सा सफर शिल्पी के साथ।

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: और अब से कुछ ही पल होंगे इलाकाई खबरें, तो बस सुनते रहिए 100.7 FM Rainbow.
2: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी. देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से मुल्क गिर विकसित भारत रोजगार और रोजी रोटी मिशन देही VBG रामजी का बाजाबता आगाज किया. रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज जिले से ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल हुए. VBG रामजी गारंटी एक्ट 2025 कल से पूरे मुल्क में नाफिज हो गया है. इस एक्ट के तहत अहल देही कुनबों को अब 125 दिन की जमानत शुदा उजरत मुलाजमत का कानूनी हक मिलेगा. हुकूमत ने VBG रामजी एक्ट 2025 के तहत तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए मुआवजे की नजरसानी शुदा शरहों का भी नोटिफिकेशन जारी किया है. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना ने कल उत्तर प्रदेश में कौमी शाहराह नंबर 34 के तकरीबन 118 किलोमीटर तवील एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कब्रई सेक्शन की तामीर को मंजूरी दे दी. काबीना के फैसले पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की तखमीनी लागत 7,145 करोड़ रुपये होगी. वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया. एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये अहम प्रोजेक्ट PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को बगैर किसी रुकावट के राबता फराहम करेगा. वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा. तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को फ़जाई रबते से जोड़ा जाएगा जिससे उसकी तरक्की में मज़ीद तेज़ी आएगी. इससे कबल वज़ीर आला ने सहारनपुर के हायर प्राइमरी कम्पोजिट स्कूल इस्माइलपुर से रियासत गिर स्कूल चलो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज़ किया. इस मौके पर वज़ीर आला ने स्कूल चलो मुहिम को अवामी तहरीक बनाने की अपील की.
3: पिछले

0: 9 वर्ष में 60 लाख से अधिक बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20 फीसदी था घट करके आज 3-4 फीसदी तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं है, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
1: नायब वज़ीर-आला बृजेश पाठक ने कल लखनऊ से रियासत गिर मुतअद्दी बीमारी पर काबू पाने की मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने वबाई अमराज से बचाव के लिए आगाही रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने दस्तक मुहिम का भी आगाज किया जो 11 से 31 जुलाई तक चलाई जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुहिम की कामयाबी के लिए हुकूमती कोशिशों के साथ साथ आवाम की शिरकत भी ज़रूरी है। कल रियासत के तकरीबन सभी अजला बशमूल वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया और अंबेडकर नगर में अवामी बेदारी रैलियां निकालकर लोगों को मुतअद्दी बीमारियों से बचाव का पैगाम दिया गया। उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET 2026 आज से 4 जुलाई तक रियासत के 60 अजला के 955 इम्तहानी मराकज पर मुनक्किद किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: इस सिलसिले में शुमाल मशरकी रेलवे लखनऊ डिवीजन आज से 4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के दरमियान बगैर रिजर्वेशन वाली इम्तहान खसूसी 2 ट्रेनें चला रहा है। इस ट्रेन में 12 बिना रिजर्वेशन वाले डिब्बे होंगे। रियासती हुकूमत ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के इल्जाम की जाँच करने वाली खसूसी तफ्तीशी टीम SIT को मजीद 15 दिन की मोहलत दी है। 15 जून को तश्कील दी गई इस SIT को 7 दिन के अंदर इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन के अंदर हतमी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन आखिरी तारीख 30 जून को ख़त्म हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।

इलाकाई खबरों के बाद उगर फिर स्वागत है आप सबका प्रोग्राम होटो पे तेरी बात में। शिल्पी आपके साथ है और मेरे साथ है आपके मेल। सबने पूछा था आपसे कि जब आप गुस्सा हो जाते हैं किसी से भी, कोई अपना हो, आपका कोई दोस्त हो या फिर घर में कोई हो, रिश्तेदारी में कोई हो, तो क्या आप उससे बोलचाल बंद कर देते हैं, फिर कभी बोलचाल नहीं करते, यानी शुरुआत नहीं करते? आपको लगता है मैं क्यों करूं और मेरी गलती नहीं है, और ऐसा होते होते लंबे समय तक जब बोलचाल बंद रहती है तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। वो रिश्ते जो कभी बहुत ही लोग मिसाल देते थे कि भाई इनकी दोस्ती देखो या इनका आना जाना कितना है, लोग एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, अब आप एक दूसरे से बात भी नहीं करते। आप क्या करते हैं जब आपको बहुत गुस्सा आता है या फिर कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपके दिल को लग जाती है? हमने आपसे जानना चाहते हैं और मेरे पास मेल से आगे गुलफशा सिद्दीकी जी का मेल आ गया। गुड आफ्टरनून शिल्पी मैम। सो गुड आफ्टरनून गुलफशा, लिख रही हैं सडीला से, लिख रही हैं मैं रिश्ते तो खत्म नहीं करती हूँ लेकिन हाँ ऐसे रिश्तों से दूरी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है। चलिए गुलफशा, आज पता चला कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो भैया जो भी आप कहें वो बिल्कुल सराखों पर रखने वाली बात है वरना पता चला कल को आप हमें मेल करना बंद कर दीजिए गुस्से के मारे। लिख रही हैं और कोई भी बात मैं भूलती नहीं हूँ, मैं एक बार किसी से बोलना बंद करती हूँ तो मैं उससे पहले कभी भी नहीं बोलती हूँ, यानी पहल ये नहीं करती हूँ, और अगर वो बोलता है तो बोल भी देती हूँ। वैसे मैम मैं बहुत खुश मिजाज हूँ, सबसे हंस कर बात करती हूँ, तो बहुत कम लोग होते होंगे जो आपसे नाराज़ होते होंगे। और भाई गुलफशा को नाराज़ मत कीजिए नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। रामपुर से चंदर तुरेहा लिख रहे हैं, कोई नाराज़ होता है तो हम उसको चाय बना देते हैं। वाह वाह क्या बात है। हाँ कहते हैं चाय ऐसी चीज़ होती है जो कभी कभी टूटे रिश्तों को भी जोड़ देती है, ऐसा मैंने भी सुना है। सुल्तान रजा साहब आ गए हैं और इन्होंने सब जानते हैं कि कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से हमें मेल किया है। सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम। और सुल्तान रजा जी अगर आप कुछ लिखा है उन्होंने, कभी तो हंस लो इन दांतों से खिलकर, बुढ़ापे में दुख ही देंगे ये हिलकर। यानी ये कह रहे हैं हंसने की बात कि खुश रहिए मुस्कुराते रहिए। मेरे ख्याल से आपका मैसेज यही है कि बहुत ज़्यादा ग्रजेस, बहुत ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं रखनी चाहिए। आई थिंक सो। हाँ सुल्तान। सुधाकर जाधव जी लिख रहे हैं प्रोग्राम होटो पे तेरी बात में कि हमको जब भी गुस्सा आता है तो हम अपने प्रोग्राम सुनते हैं रेनबो के और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके जो समाचार भी सुनते हैं वैसे गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है, और टीवी के ऊपर के रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है और गुस्सा कहीं दूर चला जाता है। यानी आपकी किसी से कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी गुस्सा हो कुछ हो, आप बढ़िया आके गाने सुनते हैं, बढ़िया आके प्रोग्राम सुनते हैं और जो भी बात होती है उसको वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ये है हमारे सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित वायाल, प्रथमेश प्रणाली, सर्वत, सानवी, हर्षदा, ये सब ग्राम पंचायत कालेगांव जफराबाद से हमें मेल कर रहे हैं। अहमद नवाब जी का भी मेल आ गया है। थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून आपने लिखा है, और आपने जो चीज़ें हमने मतलब इससे पहले प्रोग्राम में पूछी थी उससे रिलेटेड है, कोई इस प्रोग्राम से रिलेटेड बात हो तो ज़रूर बताइए आप हमें। और भी मेल्स आ रहे हैं। बबीता राव जी बेली कला गुसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ से लिख रही हैं, मैम हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। ओहो थैंक यू सो मच, वॉइस और सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच बबीता जी। और गुड आफ्टरनून लिखा है तो गुड आफ्टरनून आपको भी, और लिखूँ कि सच कहूँ मैम तो बहुत कम ही लोगों से मैं गुस्सा होती हूँ। मैं सोचती हूँ यार छोटी सी तो ज़िंदगी है, क्या किसी से नाराज़ होना, क्या किसी को हर्ट करना, क्योंकि सब अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, इसलिए मैं लोगों से, दोस्तों से, किसी से भी बहुत कम नाराज़ होती हूँ, और अगर होती हूँ तो बस एक दिन के लिए, कोई नहीं बोलता तो मैं खुद बोल लेती हूँ। और बबीता जी आपने बहुत अच्छी बात लिखी है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जब खुद बोल देते हैं तो सामने वाला कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा होता कि बबीता बात कर ले तो अच्छा है, तो हम लोग का जो रिश्ता है वो यूं ही मेंटेन रहेगा। और जैसे आपने लिखा है कुछ ही पलों की ज़िंदगी है, कुछ ही दिनों की ज़िंदगी है, तो फिर हम इसमें रूठना मनाना ऐसा क्यों करें? और हाँ अगर किसी से रूठ भी जाते हैं तो बस जैसे बबीता ने लिखा कि एक दिन के लिए रूठते हैं फिर कोई बात नहीं, बात आई गई हो जानी चाहिए जब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो, और अगर कोई बड़ी बात हो तो बड़ों के साथ बैठ कर उसको सुलझा लीजिए। फिलहाल सुलझाने का मौका हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, आप हमसे बिल्कुल नाराज मत होइए क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आपके लिए गाने भी बजाएंगे, तो एंजॉय कीजिए ट्रैक।

रोशनी रावत जी का मेल आ गया है, गांव बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही है। मैम कैसी हैं आप? 12 बजे से जुड़े हैं, आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच रोशनी। और लिख रही है, मुझे तो सिंपल रहना पसंद है, ना ज्यादा किसी से कोई मतलब रहता है और ना ही ज्यादा किसी से लगाव, लेकिन मेरी दोस्त है उसके साथ मेरा सब कुछ चलता रहता है। रूठना मनाना तो प्यार की ही एक अदा है और होता भी यही है, जहां प्यार होता है वहां ही हक के साथ लड़ सकते हैं, बाकी दुनिया में क्या हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। लेकिन एक चीज इन्होंने और भी लिखी है, मुझे गुस्सा नहीं आता लेकिन जब आता है तो थोड़ा सा बात करना कम कर देते हैं। हाँ, जब गुस्सा आता है तो फिर बात करना कम ही कर देना चाहिए, क्योंकि फिर फालतू में बात बहुत ज्यादा कभी कभी बढ़ जाती है। क्या कहती है? और हमारे पास मेल आ गया सतीश अनेजा जी का, लिखा है कि शिल्पी जी नमस्कार, खूबसूरत प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, थैंक यू सो मच। दुनियादारी बातों में कभी किसी मित्र से या रिश्तेदार से गुस्सा भी हो जाए तो उसे स्थायी नहीं रखते, बहुत जल्दी कोई ऐसी खुशनुमा बात कर देते हैं जिससे दोनों तरफ से गुस्सा भाग जाता है और उसके बाद प्यार और गहरा हो जाता है। वैसे पहले नमकीन खा ले तो मीठा और ज्यादा अच्छा लगता है, और यही बात गुस्से और प्यार का एहसास होता है। क्या बात है। रामराज जी का मैसेज आ गया है, होठो पे तेरी बात में, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजभानु, वासिल, सच्चा, रामचरण, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, मिर्जा, इमरान बेग, सबसे पहले नमस्कार दिया है। और लिखा है, हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हमारी गलती रहती है तो मैं खुद बोलता हूँ, और अगर गलती नहीं है तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। अब आप ये बताइए कितने सारे लोगों के नाम है, ये किसकी राय है? कोई एक हमें बताता कि ये उसकी राय है। एनीवेज, आपने हमसे बातें शेयर करी, अपनी राय शेयर करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों के मेल सारे हैं।

लेकिन उससे पहले एक बढ़िया सा गाना प्ले कर देते हैं और उसके बाद आपके मेल्स को शामिल करेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम होटो पे तेरी बात 100.7 FM रेडबो पर, जिसे हम और आप प्यार से कहते हैं धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: जी भाई, 1:29 से 44 सेकेंड हो गए। जावेद अख्तर साहब का मेल आ गया, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, कार्यक्रम होठों पे तेरी बात बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और लिख रहे हैं जब मुझे कभी गुस्सा आता है तो मैं नजरअंदाज करके वहां से हट जाता हूं और कुछ गुनगुनाने लगता हूं। मुबारकपुर आजमगढ़ से शमसुल कुमार राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन के साथ जावेद अख्तर साहब का मैसेज है। ये भी चीज अच्छी कि उस चीज को वहां से इग्नोर करके अगर आप हट जाते हैं तो भी बातें थोड़ी सी सरल हो जाती है। वीरपाल सिंह जी, नमस्ते मैम, मैं किसी से नाराज होता हूं तो क्या है, रेडियो सुनता हूँ और फिर सब कुछ भूल जाता हूँ, फिर बोलता हूँ। क्या बात है, यानी कि आप रेडियो सुनकर सब भूल जाते हैं उन बातों को जिस पर आपका कोई विवाद होता है और उसके बाद आप रेडियो सुनते हैं मजे से। क्या बात है वीरपाल सिंह जी। और गीता सेठ जी, रेडियो मेरे आशिकी, रेडियो मेरी शान, आप आरजे जी को नमस्ते, राम राम। और अगर इसमें मैसेज भी आप गीता भेजते तो अच्छा लगता। अमन नवाब जी लिख रही हैं होठों पे तेरी बात में, कैसी हैं आप, और आप और आपकी आवाज दोनों बहुत प्यारी हैं, अमन आपकी तरह। अगर किसी पर मैं घर में गुस्सा होती हूँ तो इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरा रिश्ता उससे कैसा है। अगर रिश्ता खास है, कोई मुझसे उम्र में बड़ा है, और अगर मेरी गलती है तो मैं आगे बढ़कर बोलती हूँ। एक बार की बात है, ये बात मैंने आपसे शेयर की भी थी शिल्पी दी, मुझे पता नहीं कि मैंने कौन सी गलती की थी, क्या हुआ और मुझे ब्लॉक कर दिया था मेरी आप ही ने। बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही और मैंने समझ लिया कि उन्हें रिश्ता खत्म करना है। और अगर मेरी इकलौती दोस्त से लड़ाई होती है तो वैसे भी डिशुम डिशुम वाली लड़ाई नहीं होती, बस कहा सुनी होती है, तो मैं झट से फ़ोन काट देती हूँ और फिर 1-2 दिन सन्नाटा रहता है और फिर उसका फ़ोन आता है। मैं कभी पहले नहीं करती, चलिए आप नहीं करती हैं पहल, दूसरा तो पहल करके वो रिश्तों को बचा लेता। और ये बात जो आप कह रही ना कि एक बार ब्लॉक कर दिया था, ये बात आपने मुझसे शेयर की थी, मुझे आज भी ये बात आपकी याद है। और साथ ही एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया है सुलेमा का, और सुलेमा का मैसेज आया बाराबंकी से, ये लिख रही हैं आरजे जी आपको नमस्ते, और जो आपका टॉपिक आज है तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर प्यार है वहां गुस्सा होता है। मैं घर में सबसे गुस्सा होती हूँ, सब मुझसे गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर हम दोनों मतलब हम सब आपस में बात कर लेते हैं क्योंकि बिना बात के काम चलता ही नहीं है। इवन मेरे घर में मेरे हस्बैंड से मेरी काफ़ी कहा सुनी हो जाती है और वो मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी 3-4 दिन बात नहीं होती लेकिन बच्चों की वजह से बात करनी पड़ती है और फिर लगता है वो बात गई आई गई हो जाती है और फिर हम लोग सामान्य जीवन जीने लगते हैं। तो जहाँ प्यार है वहाँ गुस्सा है, मैं अपने बच्चों से भी गुस्सा हो जाती हूँ। तो भाई सलीमा, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि भाई ये तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन हाँ एक मन में जो

गांठ होती है वो बांध के नहीं बैठनी चाहिए। अगर कोई परेशानी है, कोई ऐसी दिक्कत है जिसे आप लगता है कि आप दोनों नहीं सुलझा सकते, यानी आप दोनों बात की पहल नहीं कर सकते हैं, तो किसी तीसरे को जो आप दोनों का बहुत करीबी हो उसे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं और फिर बस बढ़िया सी खूबसूरत सी बातें कर लीजिए। फिलहाल एक बढ़िया सा गाना जो आपके मूड को बिल्कुल खुशनुमा और अच्छा बना दे।

जी बहुत सारे मेल्स हमारे पास आ रहे हैं रूठने और मनाने पर। भाई रूठना तेरा और मेरा मनाना, रूठना तेरा और मेरा मनाना, याद आता है वो अक्सर जमाना। लाख खफा हूँ हम एक पल में, फिर गले से लगा लेती है एक पुरानी यादों का फसाना। और भी हमारे पास मेल आ गए, और ये मेल हमारे पास आया है पिंकू सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहे हैं। लिख रहे हैं, मेरे अगर किसी से लड़ाई हो जाती है तो मैं धीरे से उनसे दूर हो जाता और इसी चक्कर में चार लोगों से दूर हो गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेल पढ़ने के लिए। ये आपने चीज बताई, बहुत लोगों से दूर हो गया है, लेकिन कभी आपने ये नहीं बताया, अगर ये भी आप मेल में लिखते कि कुछ आपके रिश्ते सुधरे, आपने तो सारे बिगाड़ लिए भाई पिंकू सोनी जी। लेकिन हाँ, जैसे मैं कहती हूँ, ईमानदारी से मेल कीजिए, तो वो आपने किया जो आपको ठीक लगा, जो आपके साथ हुआ वो आपने बताया, इसके लिए थैंक यू सो मच। मोनू सेठ जी हमें मेल कर रहे हैं, लिख रहे हैं बहुत खूबसूरत गाने बनाए जा रहे हैं आपके द्वारा, थैंक यू सो मच मोनू, आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम। और देखिए हमारे पास मेल आ गए हैं गाने सुनने के, तो भाई अभी गाने का प्रोग्राम थोड़ा सा बाकी है, और ये हम फुलवारी बाजार जिला बाराबंकी से मेल कर रहे हैं। शिल्पी दीदी आपको प्यार भरा गुड आफ्टरनून और प्यार भरा नमस्कार। तो भाई आपको भी गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार। और आज के टॉपिक से रिलेटेड मुझे कहना है कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं एक गिलास पानी पी लेता हूँ, उसके बाद गुस्सा शांत हो जाता है। दीदी कुछ लोग हैं, उनको उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सद्दाम भाई, मेरे पिताजी का नाम है मुबारक अली, और मोहम्मद अमजद भाई। पूरा ईमेल प्लीज प्लीज पढ़िएगा, और आप हमेशा लिखते कि आप अपने बड़े भाई के मोबाइल से मेल कर रहे हैं। मोहम्मद फैज साहब, ये आपने अच्छी बात लिखी कि आप एक गिलास पानी पी लेते हैं, क्योंकि उतनी देर में जो भी गुस्सा होता है वो रफा दफा हो जाता है। और आपकी बातों का सिलसिला और आपके मेल्स का सिलसिला यूं भी जारी रहेगा। और आपको बता दें कि अगर आपके भी गुस्सा आता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, गुस्से में नहीं, आपको बताना है कि आपके जब गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, यानी गुस्से में रिश्ते खराब कर लेते हैं या फिर कोई बात नहीं कहकर आगे बढ़ते हैं, मतलब पुरानी बातों को झाड़ते हैं और सोचते हैं अरे जो हुआ हुआ अब आगे बढ़िए, यूं रिश्तों में गांठ डालने से क्या फायदा। फिलहाल 1:41 हो गए, एंजॉय कीजिए ये प्रोग्राम और साथ ही मेल्स का सिलसिला लगातार जारी रखिए।

0: कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: एक बजकर 45 मिनट और 38 सेकेंड हो गए। रेनबो 100.7 FM पर प्रोग्राम होटो पे तेरी बात, शिल्पी आपके साथ और शिल्पी के साथ आपके मेल्स। ये मेल आया नजीम उस्मानी साहब का महमूदाबाद सीतापुर से। लेकिन जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो उसे 2-3 दिन नहीं बोलते, हम अगर कोई मानता था तो मान भी जाते थे। अब गुस्सा कम आता है, मतलब अब गुस्सा कम हो गया इनका है, और पहले होता था 2-3 दिन नहीं बोलते थे, शायद यही कहना चाहते ना। और इसके बाद हमारे पास मेल आया है, किसका ये मेल है? नरेंद्र सुधार जी का, नोहर राजस्थान से। लिखा है, मैं कुछ खास दोस्तों के साथ कभी कभी किसी बात पर गुस्सा हो जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों के साथ गुस्से में भी प्यार है। मुझे ये कहकर मना लेते हैं कि गुस्से में तुम तो और हसीन लगते हो, और फिर हंसी के ठहाके लगते हैं। चंद पल का गुस्सा ही होता है, उसके बाद वही हंसी मजाक, वही प्यार। यकीनन कई बार गुस्से होने पर अच्छा लगता है, क्योंकि दिल में तो प्यार ही होता है। जी बिल्कुल सही बात है, इसमें आपने बिल्कुल भी गलत बात नहीं कही है। और क्या कह रही है भाई, ये देखिए पिंकू सोनी का फिर से मेल आ गया है, और वो कह रहे हैं कि अगर कोई चीज किसी को आसानी से मिल जाए तो लोग उसकी कद्र नहीं करते, इसलिए दूर होकर उन्हें उनकी करने का एहसास कराना जरूरी होता है। अच्छा जी, मोनू सेठ जी ने लिखा, गाने तो अच्छे बज रहे हैं, लेकिन मैं आपको मेल कर देता हूँ जो आज का टॉपिक, उस पर लिखा है कि मैंने लोगों को अब बनाना छोड़ दिया, नाराज हो तो हो जाए नाराज, दूरियां होती हैं तो हो जाए, क्योंकि आप जितना सीधा रहोगे, जितना आप झुक लोगे, उससे अधिक लोग नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। मुझसे तो लगभग सारे रिश्तेदार नाराज है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मनी है तो सब हनी है। मोनू जी को कोई फर्क नहीं पड़ता गुस्सा होने से, चाहे आप गुस्सा हो जाइए उनसे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए भाई थोड़ा सा ये खास बात ध्यान रखिए कि भाई कुछ लोग के साथ आपकी बनती रहे, यानी अच्छे लोग आपके साथ हमेशा होने चाहिए, वो लोग जो आपका भला चाहें, जो लोग आपसे की तरक्की से खुश हों, है ना, वो उन लोगों को हमेशा अपने साथ रखिए। वो नाराज़ हो जाए तो उसे ज़रूर मना लीजिए। कई बार ऐसा होता है किसी का बोलना बहुत ख़राब लगता है, मतलब किसी किसी की जो वाणी होती है वो थोड़ी कठोर होती है, लेकिन दिल के वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आपको ढूंढना होगा कि ऐसे कौन से लोग हैं। फिलहाल एक गाना बहुत अच्छा जो मेरे दिल के भी करीब है, मैं प्ले करने जा रही हूँ, आई होप आप भी इंजॉय करेंगे इस ट्रैक को।

रिश्तेदार अगर जरूरत पे साथ ना दे तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना है जरूरी, क्योंकि स्वार्थी, जलन और मतलबी लोग इन्हें है नहीं पसंद। ओ तो अब अगला मेल भी आया, क्योंकि जल्दी इसलिए पढ़ रहा क्योंकि 1:51 हो गए। होठों पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार, सादर प्रणाम, और लिखा है सदा खुश रहिए और खुशियां बांटिए, यही कामनाएं हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। रामेश्वर दयाल जी का, रामेश्वर कठेरिया जी का मेल आ गया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा और प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू और समस्त कठेरिया परिवार, और लिखा है कि हम में गुस्सा होता तो हम एफएम रेनबो सुनने लगते हैं, क्या बात है। दिग्दर्शन कौर जी का आ गया है, वो गाना सुनना चाहते हैं, तो बस गानों का प्रोग्राम हाजिर होने जा रहा है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अभी तो 1:52 हो गए। मोहम्मद तालिब अंसारी, राजा कटरा, बाराबंकी, गुड आफ्टरनून शिल्पी जी, शिल्पी मैम नमस्कार। तो भाई आपको भी गुड आफ्टरनून तालिब जी, थोड़ा लेट हो गए हैं लेकिन आ ही गए हम इस प्रोग्राम में। मुद्दे पर कहना चाहूंगे, गुस्सा मेरे अंदर बहुत है, बट गुस्सा आ जाए तो हम ही पहले पहल कर देते हैं बोलने बुलवाने की। हाँ ये बात सही है कि पहल कर दीजिए तो अच्छा है, कि सामने वाले को अगर बोलना तो भी पता चल जाएगा, और कई बार आप किसी को मनाइए तो वो और रूठ जाता है, मैंने ये देखा है। जैसे आप किसी को, कोई आपसे रूठ गया है और मानिए आप पहल करने में आगे रहते हैं और आप उसे मनाने के लिए जाते हैं, तो वो ये मान लेता है कि भाई आप ही हमेशा मनाते हैं, तो वो और रूठता है तो वो रूठने का मजा और तरह का होता है, रूठने मनाने का। वैसे रूठने मनाने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है, आज से नहीं ये हमेशा होता आया है, और मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब अगर

माँ रूठ जाती है, क्योंकि सब रूठ जाए सब ठीक है, लेकिन अगर माँ आपकी रूठ जाती है किसी बात पर तो बहुत बुरा लगता है। नहीं, उसको नहीं रूठना चाहिए, लगता है वो हमेशा बोलती रहे, क्योंकि वो जो है वो ऐसा होता है माँ के आंचल में कि भाई आप सारे गमों को भूल देते हैं, सारे गिले शिकवे एक तरफ और माँ का प्यार दुलार एक तरफ। वैसे हम जो भी हमारे लिसनर्स से मेल किया, सबने अलग अलग विचार रखे, और एक विचार मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरी माँ भी मुझसे कहती थी कि जब भी गुस्सा आए तो एक गिलास पानी पी लो, यानी कि तुरंत रिप्लाई ना करो किसी भी चीज़ का। थोड़ा पानी पीने में ये होता है कि आपका थोड़ा सा समय निकल जाता है, और जब आपका समय निकलता है तो आपको लगता है कि हमें कुछ भी उल्टा सीधा ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या अगर सामने वाला भी बोलता है तो उस चीज़ को आप, एक कहते हैं ना कि चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, तो वो चीज़ें आप करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुनेश कुमार राज जी का मेल आ गया, गांव भानपुर हरौबा जिला लखीमपुर खीरी से। शिल्पी जी शुभ दोपहरिया आपको भी, और लिखा ना घमंड करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, ना घमंड करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, अपना वही रहता है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। और इन्होंने लिखा है, सच कहूँ शिल्पी जी तो मुझे गुस्सा कभी नहीं आता, पर जब लोग बात पर बड़ी बड़ी हाँकने लगते हैं तो और आपकी कही हुई बात को इग्नोर करने लगते हैं, तब दिल को ठेस पहुँचती है, गुस्सा आ जाता है। होता है भाई, ये सब इमोशंस होते हैं ह्यूमन लाइफ के, और हर किसी को गुस्सा आता है, और ये इमोशंस हर किसी में होते हैं, हर इंसान में होते हैं। अगर ये कोई कहता है कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ या मुझे कभी गुस्सा आता ही नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। कभी किसी का गुस्सा बहुत तेज़ होता है और किसी का कम होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंट्रोल करने की बात होती है, क्योंकि ये इमोशंस हर किसी में होते हैं। जैसे कि जलसी, लोग कहते हैं हम किसी से जलस नहीं कर फील करते, लेकिन ये सब इमोशंस है, कहीं ना कहीं आते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, बस आपको ये देखना है कि वो आपको या किसी दूसरे को बहुत हर्ट ना करें। वारिस अली खान साहब का मेल आ गया है, और ये आखिरी मेल हम पढ़ें क्योंकि 1:55 हो गए हैं। शिल्पी जी आदाब, मेरा मानना है जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुको मत। वैसे तो मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता है, मगर आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, मैं तोड़फोड़ करने लगता हूँ, उसके बाद उस इंसान से ज़िंदगी भर बात नहीं करता। अगर वो सॉरी बोल देता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि मैं ना तो लूज टॉक करता हूँ ना ही सुनना पसंद करता हूँ। तो भाई और सब चीज़ें तो ठीक है वारिस अली खान साहब, लेकिन ये तोड़ फोड़ करने वाली बात से मुझे थोड़ी सी लगता है कि इतना भी गुस्सा नहीं होना चाहिए कि आपका गुस्सा आपके कंट्रोल के बाहर हो जाए। फिलहाल हमें तो ये लगता है कि अगर कोई आपसे रूठ जाए तो वो रूठने की वजह बता दे। एक शेर है, रूठने का हक है तुझे वजह बताया कर, रूठने का हक है तुझे वजह बताया कर, खफा होना गलत नहीं है तू खता बताया कर। तो खता बता दीजिए कि क्या है। और प्रवीण जी का चलते चलते मेल आ गया, लिख रहे हैं मुझे बहुत दुख होता है जब कोई गुस्सा हो जाता है और मैं उस गुस्से को पी लेता हूँ। तो चलिए अब जल्दी से गाना प्ले कर देते हैं, और इस प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल जो हमारे सभी लिसनर्स का बहुत फेवरेट है उसे एंजॉय करेंगे। बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। शिल्पी सेज बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

0: किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाईची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे।

0: केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है।

0: अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: और गाने के बोल उन्होंने दे दिए, चलिए पूरी कोशिश करते हैं। गाने के डेडिकेट किए नाम शामिल कर लीजिए तो कुलदीप गुप्ता, महेंद्र देपन, फैज अंसारी, ओस मोहम्मद अंसारी साहब। आंचल सेठ जी खालिसपुर से हमें भेज रही हैं, नमस्कार कर रही हैं और साथ ही लिखा है, भरोसा दूसरों पर रखो तो गम दे जाती है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और भरोसा दूसरों पर रखो तो गम मिलता है। खालिसपुर अमेठी से बहुत ही अच्छी बात के साथ मेल किया है। संतोष जी का मेल आ गया, संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे जी का मेल आ गया है। और साथ ही हमारे पास गुरमीत सिंह का जी मेल आया है, मीता साउथ दिल्ली से लिखा खुशनुमा नमस्ते। सुरेश नारंग जी का भी मेल आ गया सहारनपुर से, सोनाली, आशा नारंग, सुरेश नारंग और सबका मेल लिखा है और सहारनपुर से लिखा है थैंक यू सो मच। और हमारे पास लगातार मेल्स आने का सिलसिला जारी है। तालिब अंसारी साहब का मेल आ गया राजा कटरा बाराबंकी से, शिल्पी मैम आपकी आज्ञा का पालन करते हुए एक मेल कर रहा हूँ, एक ही गीत की फरमाइश है, आपकी बात मानते हैं, आप भी मेरी बात मानिए और गीत सुनवा दीजिए। अच्छा क्या बात है। शारून अंसारी जी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से। मनोज बंसल जी का मेल हांसी हरियाणा से आ गया है और ये मेल आया रोजी डिकेस्ट्रो जी का दीजिए आ गया सहारनपुर से, पर्ल डिकेस्ट्रो, जॉन डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो सहारनपुर से आपका मेल लिखा है। या तो जो हमारी रिक्वेस्ट शामिल कर लीजिए या फिर आप अपनी पसंद के गाना जो हो उसमें आप नाम शामिल कर लीजिए। रोशनी चौरसिया जी का मेल आ गया है अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से और भाई ये मेल आया है बहुत दूरी से और वो है गुजरात। जी हाँ, गुजरात से आया, राजकोट से कौशिक, अस्मिता, मम्मी पापा, महेश, बड़वाड़ा परिवार और लिखते हैं नमस्कार शिल्पी मैम, केम छो, गुड आफ्टरनून। और इन्होंने भी बारिश का ही गाना मांगा है कि भाई वही सुनवाइए। स्वर्ण सिंह जी आपका नाम हम पढ़ चुके हैं, गाना भी आपका पसंद का प्ले हो चुका है। महेश बोरा जी अजमेर राजस्थान से लिख रहे हैं और लिख रहे हैं, मेल शामिल हो या ना हो, धड़कन मेल के म्यूजिकल सफर का सुकून भरा आनंद अवश्य और हमेशा आता है, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, क्या बात है। राजेश जी का मेल आ गया, राजेश खुबर खेड़े, शिव सागर खुबर खेड़े, इंदिराबाई खुबर खेड़े, शिवजी नगर, वडाली देशमुख से, कांडवी बुलढाड़ा से, दीपाली राम धाड़े, सुराज राम छकुली ताई खुबर खड़े, तिलोरी अमरावती से, सुनैना, पवन भोंडे, आप सबका मेल आया, थैंक यू सो मच। बोधराज खुरवाल जी का मेल आ गया है उत्तम नगर दिल्ली से, कमला रानी, गीतिका खुरवाल और भानु प्रकाश जी। और बोधराज जी दो तीन बार मेल करते हैं, वो सोचते हैं एक बार मिलेगा नहीं। महेंद्र प्रसाद मोदी जी का मेल आ गया है और ठाकुर साहब रामगढ़ कैंट से,

मेल किया है। जावेद अख्तर साहब का मेल फिर से आ गया और लिखा, हॉटमेल में किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, रेशमी नगर मुबारकपुर, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से। और सबके नाम लिखे, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, शमसुल कुमार राही, तूबा आफरीन, शमीम अख्तर अंसारी साहब, पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तापड़े, आशीष मोहरकर, और धन्यवाद। और साथ ही अब हम जल्दी से गाना प्ले कर देते हैं, नहीं तो नामों का सिलसिला तो यूं ही रहेगा जारी।

2:38 क्या 2:00 ठीक ठीक पूरे 39 मिनट हो गए 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये हॉटमेल प्रोग्राम और हॉटमेल आपका बहुत फेवरेट है मैं जानती हूँ क्योंकि लगातार आप हमें मेल करते हैं अपनी पसंद के गानों के साथ और साथ ही आप कहते हैं भाई नाम भी पढ़ दीजिए। अतीक अली साहब का मेल आ गया है सिकलेनिया चौराहा कमलापुर सीतापुर से और लिख रहे हैं 6 महीने बाद मेल कर रहे हैं कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और सभी सुनने वाले भी उम्मीद करते हैं कह रहे हैं अच्छे होंगे और गाना सुनना चाहते हैं 6 महीने बाद इन्होंने मेल किया थी कली साहब ने। सुधाकर जाधव जी आपका हम मेल पढ़ चुके हैं शायद आपसे रह गया सुनने से। सीताराम कांगड़ा जी का मेल आ गया एकता कॉलोनी रोहतक से। बबीता बोट निखिल कांगड़ा तन्वी बोट और लिखा है आपकी पसंद हमारी पसंद शुक्रिया। विनीत कुमार जी का मेल आ गया है ये ग्राम अर्थापुर है पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर हॉटमेल प्रस्तुत करने वाली बहन को गुड आफ्टरनून और दोपहरिया का सादर प्रणाम और प्रोग्राम सुपर हिट है आपकी स्वीट स्वीट मीठी आवाज में अच्छे गाने बज रहे हैं अच्छा लग रहा है प्रोग्राम एक मेरा गाना है वो आप बजा दीजिए तो अच्छा है। चलिए देखते हैं भाई पूरी कोशिश करते हैं। मुनेश कुमार जी का मेल आ गया भानपुर गरहरेवा से आपके मेल हम पढ़ चुके हैं मुनेश जी। सुधाकर जाधव जी ने हमें 3-3, 4-4 मेल कर दिए और हम उनका मेल पढ़ चुके हैं फिर भी नाजिम जी कर रहे हैं हमें मेल उन्होंने लिखा है भाई बारिश के गाने थोड़ा सा इंजॉय करना चाह रहे हैं लोग चलिए कोशिश करते हैं दिल्ली से सुन रहे हैं और ये सीताराम कांगड़ा जी का भी मेल हम पढ़ चुके हैं पुनः मेल आ गया। बाबू अंसारी जी का भी मेल पढ़ा जा चुका है ये मेल आया है हमारे पास जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल कृष्णलाल शुभम प्रसाद अर्णव जायसवाल दुर्गेश्वरी राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल जी का। जगदीश जी का मेल आ गया है कार्यक्रम लाइव एंजॉय हो रहा हमें भी शामिल कीजिए मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी से जगदीश धाकड़ नैमा रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह धाकड़ शिवांगी धाकड़ थैंक यू सो मच। रश्मि जी का मेल आ गया और रश्मि जारना राजकोट गुजरात से लिखा है आपका स्वागत करते हैं शामिल करिए कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। संदीप मक्कड़ जी का मेल आ गया ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत मक्कड़ कमल सानी भिंगावाला चौक गोराया जलंधर पंजाब से मेल आ गए हैं और इसके बाद हम मेल पढ़ते हैं और ये मेल किसके हैं सुनील पाठक जी का मेल आ गया है अनारकली बाजार जगराव से इनका मेल भी हम पढ़ चुके हैं ये कुछ मेल जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं बराबर। शमसुल कमर राही जी गुंज जुंडवारा से शमसुल कुमार राही शाहीन फातिमा अदनान खान अनु खान लिखा है आदाब और ये मेल गुंज जुंडवारा से आ गया है हमारे पास। हीरामणि वर्मा जी का भी मेल आ गया हीरामणि वर्मा जी का मेल और इसके बाद ये हमारे पास ये इन्होंने कहा इसके हम बता दें दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा और चलिए अब फरमाइश शामिल हो जाए क्योंकि 2:41 हो गए हैं।

2:45 हो गए हैं। रामगंज खंडवा से विजय मोहबिया, कविता मोहबिया, सोनू मोनू, रानू, सपना शिवी कॉलोनी और पेंटर बाबू शिवपुरम। लुबना अंसारी जी का मेल आ गया है। प्यारी बहना आरजे जी को नमस्कार, आदाब। आप हमेशा हमेशा ऐसे ही खुश रहिए और खुशियां बांटती रहिए, क्या बात है। शेरवानी स्कूल गुंजडुंडवारा से हैं आप सब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मोहम्मद कैफ साहब, मोहम्मद साहिर साहब का मुझे, मोहम्मद फैज साहब हैं ये जो रामपुर जिला, रामपुर कटरा जिला बाराबंकी से मेल कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं, बहुत बेसब्री से हॉटमेल का इंतजार रहता है। एक मेरा भी सॉन्ग चला दीजिए। शिल्पी दीदी प्लीज़, आपने पिछली बार कहा था कि आपने मेरा गाना नहीं प्ले किया, प्लीज़ आज तो कर दीजिए। चलिए भाई, कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट होती है। और ये शमसुल कुमार जी का मेल हम शामिल कर चुके, नहीं करा है। शमसुल कुमार राही, शाहीन, फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान, गुंजडुंडवारा से, गुंजडुंडवारा से बहुत सारे मैसेज आ सकते हैं। और उन्होंने लिखा है कि आज के इस खूबसूरत मौसम की तरह आपकी पेशकश भी सुंदर है, थैंक यू सो मच। और ये विक्रम जी हैं, विक्रम कड़वासरा और योगेश कंगवासरा, ये इन्होंने हमें गाँव कलाना राजस्थान से मेल किया है और मेरे ख्याल से हम पहली बार इनका नाम पढ़ रहे हैं। और ये हैं हमारे साथ, कौन हैं, कमलकांत गुप्ता जी हैं, जी कमलकांत गुप्ता जी, समटीला नवापारा से, मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकुर राघव गुप्ता जी, भोदराज खोरवाल जी, आपका हम मेल पढ़ चुके हैं और आप कंटिन्यूसली बार बार मेल कर रहे हैं। बाकी हमारे पास जो भी मेल आए हैं वो बाबू अंसारी जी का भी, सुरेश नारंग जी का भी मेल हम शामिल कर चुके हैं, सहारनपुर से आपका मेल आया था। और अब जल्दी से हम गाना प्ले कर देते हैं आप लोग में किसी की पसंद का, एंजॉय कीजिए, बहुत ही प्यारा सा गीत है फिल्म आराधना से।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, 53 मिनट 56 सेकेंड हो गए। खेल बाजार, पानीपत से नीरज मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिव कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का जी का भी मेल है और लालगिरी जी का भी मेल आ गया है। कार्यक्रम पेश करता आदरणीय को प्यार नमस्कार, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए धन्यवाद। कोई भी सॉन्ग में शामिल कर लीजिए, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षिता, खुशी गोस्वामी जी। विजय मल्होत्रा जी का मेल आ गया, नमस्कार, आज हम शामिल होंगे ऐसी आशा है। बिल्कुल लीजिए, शामिल हो गए आप। और इन्होंने लिखा है कि विजय महोबिया, कविता महोबिया, सपना शिवी सलोनी, ईशु बाबा, पिंटर बाबू, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। थ्री ब्रदर आसिफ अंसारी तेलंगाना हैदराबाद से किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। कुछ नाम है दोस्तों के, साबिर अंसारी कानपुर से, तालिब रजा कटरा से, नरेंद्र जी, नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार, हिमांशु सुधार, कृपया नाम जरूर शामिल कीजिए, नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। हाँ, आप हमें अपनी पसंद का गीत जरूर सुनवा दीजिए, नहीं तो नाम शामिल कर लीजिए। शिवम सिंह जी, अंदाज मूवी का सॉन्ग बजा दीजिए, मैम बहुत बढ़िया मौसम है। जी हाँ, नो डाउट, बहुत बढ़िया मौसम है। आप मुझे बाहर के अपडेट दे रहे हैं, हम तो अंदर बैठे हैं, लेकिन हाँ आज सुबह से मौसम खुशनुमा था। सोनू परवाना जी का भी मेल आ गया है और खालिसपुर अमेठी से, और तेज बहादुर यादव जी, 2:55 हो गए, लग रहा जल्दी सबके नाम पढ़ दूँ ताकि किसी के नाम ना रह जाए। गांव मऊ शिरकी जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से, लेकिन गुरुग्राम हरियाणा से सुन रहे, तेज बहादुर यादव, ममता यादव, बच्चे रोनीत यादव, बेबी वनिका, किस भी सदाकार गीत में शामिल कर लीजिए। महन देपन जी आ गए हैं, आरजे शिल्पी मैम और एफएम लखनऊ को सादर प्रणाम, सुल्तान रजा भाई, बाबू भाई अंसारी की दोस्ती का अंदाज निराला, रोशनी रावत दीदी और बबीता राव दीदी के स्नेह ने हर पल संभाला, और बहुत बढ़िया आपने लिखा है। लेकिन इस समय हम सबकी पसंद क्या मैं निकाल चुकी हूँ, जिनकी पसंद का गाना बजना है। नवा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, क्यारा, ज्योति रानी, गुरमत कौर, जब जब फूल खिले से लिखा है गाना, लेकिन देखिए मजबूरी हमारी इतनी कि अब इस समय समय इतना कम है कि जो गाना हमसे आज का सेलेक्ट हुआ है वही गाना प्ले होगा। एंड बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, गाना कहीं भी कुछ भी इसमें कहेंगे नहीं कि अप डाउन है। फिलहाल 2:56 हो गए हैं, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में मेरा आपका फिर रहेगा साथ, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे

Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow. शहर की म्यूजिकल हार्टबीट, दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

जी, शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो सुन रहे हैं आप। इस वक्त रेनबो की घड़ी में बज चुके हैं दिन के पूरे 3 और यहाँ पर आपकी दोस्त सीमा हाजिर हो चुकी है आज के म्यूजिकल शो के साथ। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। तो चलिए आपकी सार को बनाते हैं और भी स्पेशल खूबसूरत गानों और अपनी इंटरेस्टिंग सी बातों के साथ। शुरू करते हैं आज की ये जर्नी आने वाले ब्यूटीफुल ट्रैक्स के साथ। तो कहीं मत जाइए, बस कनेक्ट रहिए शहर की म्यूजिकल हार्टबीट रेनबो 102.2 की फ्रिक्वेंसी पे।

भाई ये वक्त भी हमसे कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि साल के 6 महीने बीत गए, हमें तो कुछ पता भी नहीं चला ये वक्त कैसे इतनी जल्दी गुजर गया। साल 2026 का फिलहाल जुलाई के मंथ की शुरुआत हो चुकी है धीरे धीरे, और मौसम भी यहाँ पे देखिए अभी करवट लेना स्टार्ट कर चुका है। बारिश भले ही जोरदार ना हुई हो लेकिन उमस, बदलते तापमान और कभी धूप तो कभी बादलों का आना जाना लगातार यहाँ पे जारी है। तो दोस्तों ये साल का वो समय है जब प्रकृति भी अपना रंग बदलती है। हर किसी को इंतजार है मॉनसून की पहली अच्छी बारिश का। हालांकि आज बारिश हुई लेकिन उसके बाद मौसम का क्या हाल है ये सब हम जो है अभी यहाँ पे महसूस कर सकते हैं, जो उमस वाली गर्मी हो रही है। और जब बारिश की बात चली है तो क्यों ना ये ट्रैक एंजॉय कर लिया जाए जो बारिश के इंतज़ार में है, जैसा कि हम भी अच्छी बारिश के इंतज़ार में, तो कौन सा है ये ट्रैक, चलिए अभी आपके साथ हम मिलकर एंजॉय करते हैं।

तो बिल्कुल दोस्तों, मॉनसून के आगमन में अच्छी बारिश के इंतजार में फिलहाल हम सभी हैं, और ये बारिश आने से पहले भाई अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है, और इसके साथ ही अपने घर की सुरक्षा का और अपने आसपास की सफाई का भी ध्यान रखना है जरूरी। ये बारिश के पहले की बातें हैं जो हमें इंतजाम कर लेनी चाहिए, जैसे कि छत और बालकनी के ड्रेनेज की सफाई जरूर कर लें, दीवार या टेरेस में सीलन है या रिसाव की संभावना हो तो अभी थोड़ा सा टाइम है और टाइम रहते ही इसको रिपेयर करा ले तो भी बेस्ट होगा। यदि बिजली के तार कहीं जो ढीले हैं, स्विच उनके ढीले रह गए हैं तो उन्हें भी ठीक करवाना अभी बेहतर है, और अपने आसपास के माहौल पर फिलहाल ज़रूर ध्यान देने की बात है, क्योंकि गली और आसपास के नालियों की सफाई अगर नहीं रखेंगे तो यही बारिश जो है हमें थोड़ा सा परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से पानी का भराव हो सकता है, गंदगी जमा हो सकती है और तरह तरह की बीमारियां फैल सकती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें अभी बारिश के आने से पहले जो है सब ओके कर लेनी है, अपडेट कर लेनी है, ताकि हम मानसून को अच्छे से इंजॉय करें। तो फिलहाल वक्त मानसून का है और धीरे धीरे ये आ भी रहा है हमारे करीब में, तो इसको इंजॉय हम सब मिलकर करें। बस इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखें, और बस ऐसा ही एक ट्रैक हमने यहाँ पे आपके लिए क्यों भी कर रखा है, तो चलिए अभी ये ट्रैक एंजॉय करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद क्या खास बात करने वाले हैं, कुछ खास बात आज हम करेंगे। मोहम्मद अजीज साहब की बर्थ एनिवर्सरी है, इस पे हम बात करेंगे आगे आपसे आके, और इसके बाद में हम बात करेंगे, आज हम एक ख़ास दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज का ये दिन जो है वो शिवाजी टर्मिनस के लिए जो है बड़ा स्पेशल दिन है, जब इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। तो ये ख़ास बातें हम आज के दिन पर आपके साथ में करने वाले। फिलहाल म्यूजिकल शो एंजॉय कर रहे हैं आप शहर के म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो 102.2 की फ्रिक्वेंसी पे, तो कनेक्ट रहिए। इस वक्त रेनबो की घड़ी में 3:16 हो रहा है पूरा

बिल्कुल दोस्तों, बदलता हुआ मौसम है, बादलों की आहट, और ऐसे में दिल को छू लेने वाला कोई गाना अगर सुनाई दे तो बात ही कुछ और हो जाती है। तो आज का दिन एक और वजह से भी है खास, क्योंकि आज हम मना रहे हिंदी सिनेमा के जो बहुत ही शानदार गायक रहे हैं, दिग्गज गायक मोहम्मद अजीज साहब की जयंती का दिन है, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में अपनी गायकी के दमदार अंदाज से लाखों दिलों में जगह बनाई। उनसे जुड़ी तमाम सारी बातें हम आपके साथ शेयर करें, उससे पहले उनकी आवाज़ में गाया हुआ ये गाना पहुंचा दें आप तक।

जी हाँ, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद अजीज साहब की, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी का दिन खास जो है। फिलहाल उन्होंने करोड़ों फैंस के दिलों में अपनी जगह तो बनाई, और उनके गायकी ने, शानदार गायकी ने जो है हम सब के दिलों में राज किया है। तो उनके जन्म की अगर हम बात करें तो 2 जुलाई 1954 में कोलकाता में जन्मे मोहम्मद अजीज साहब को बचपन से ही गायकी का शौक रहा। रफ़ी साहब के वो ज़बरदस्त

फैन भी थे और रेडियो पर जब भी उन्हें रफ़ी साहब के गाने सुनने को मिलते तब वो सारे काम काज छोड़ कर जो है बस रफ़ी साहब के गीत गुनगुनाने लगते और कह सकते हैं आप कि यही उनकी प्रैक्टिस भी थी जो धीरे धीरे रफ़ी साहब के गाने उनके जब वो थोड़ा सा मैच्योर हुए बड़े हुए तो उनके गाने उनकी रोज़ी रोटी का